दोस्तों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम भक्ति गीत। आज के इस भक्ति गीत सफर में आप सुन रहे हैं क्रिश्चियन भक्ति गीत। जब मन परेशान हो तो प्रभु यीशु का नाम दिल को सुकून और आत्मा को शांति देता है। उनकी शिक्षाएं आज भी उम्मीद, विश्वास और प्रकाश का मार्ग दिखाती हैं। और आज के इस विशेष भक्ति संगीत

0: दोस्तों, इसी के साथ आज के भक्ति गीत कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे गालो श्रोताओं का समाचार। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।
1: हिया कसवानी इटानगर तनगा दमरोगम जब अमदगला लुसिर पोलोग हम निगो लोन आ रहोगो घलो मेंकेन अबालोक मेलेन जी दाग नांगो मारियो मत इंडिया ओक इटली देश अन्य तोरु हिदा कुला मेनला इंडिया ओक मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक्स कॉरिडोर IMEC ग अरालो काल ताल दोकला योना योगो अमला कुसिन ओक बिजनेस विपा अबालो अमला कुसिन काकेन जब इन्वेस्टमेंट हिला ओक सप्लाई सेन अब एमसिन होर्दो जाब ल लाकुस्का एमलासिन तरक लेकोग्लासिन इतुकु ओगो प्रेम मिनिस्टर मोदी ओक इटली के प्रेम मिनिस्टर

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

सुप्रभात दोस्तों, सुबह की ताजी हवा, उगता हुआ सूरज और नई ऊर्जा के साथ आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा मॉर्निंग शो सुबह सवेरे। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त कारगर, और अगले कुछ पलों में हम साथ मिलकर करेंगे एक हेल्दी और पॉजिटिव शुरुआत अपने दिन की। दोस्तों, आज की तेज भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर हम अपने सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो जिंदगी का मजा अधूरा रह जाएगा। इसलिए इस कार्यक्रम में हम रोज लेकर आते हैं योग के आसान आसन, जो शरीर और मन को संतुलित रखे, और कुछ हर जरूरी हेल्थ टिप्स जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को बनाए और बेहतर। तो चलिए, गहरी सांस लीजिए और अपने शरीर को थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए और खुद को तैयार कीजिए एक और नई सुबह की ओर। दोस्तों, आज के योग सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं एक आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या की, यानी अपच यानी इनडाइजेशन के बारे में। गलत खान पान, देर से खाना, ज्यादा तला भुना भोजन और तनाव की वजह से पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, जिससे गैस, पेट फूलना, बारीपन और अपच जैसी दिक्कतें होने लगती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि नियमित योग और प्राणायाम से पाचन तंत्र मजबूत बनता है और अपच की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कुछ आसान और प्रभावी योगासन।

सबसे पहला आसन है वज्रासन। इसे करने के लिए घुटनों को मोड़ कर एरियों पर बैठ जाएं, हाथों को घुटनों पर रख के और रीढ़ सीधी रख के 5 से 10 मिनट तक इसी मुद्रा में बैठे। इससे आपके पाचन तंत्र को मजबूती मिलती है, गैस और अपच में राहत मिलता है। ये एकमात्र योग है जो खाने के बाद भी किया जा सकता है। अगला है पवन मुक्तासन। इसे करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं, घुटनों को मोड़ कर छाती से लगाएं, हाथों से पकड़कर 15 से 20 सेकंड तक इसी स्थिति में होल्ड करें। इससे पेट की गैस निकल

में मदद मिलती है, पेट दर्द और अपच में राहत मिलता है। अगला है भुजंग आसन। इसे करने के लिए पेट के बल लेट जाए, हथेलियों को कंधों के पास रखें, धीरे धीरे छाती को ऊपर उठाएं। 10 से 15 सेकंड तक इसी स्थिति में रहें। इससे पाचन अंगों को सक्रिय मिलता है और कब्ज और अपच में सुधार मिलती है। अगला योगासन है अर्ध मत्स्यांध्र आसन। इसे करने के लिए जमीन पर बैठकर एक पैर को मोड़े, शरीर को धीरे धीरे विपरीत दिशा में मोड़े। 15 से 20 सेकंड तक रुके रहें। इससे पाचन तंत्र को मजबूती मिलती है और पेट की मांसपेशियों को सक्रिय करता है। अगला है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसे करने के लिए आराम से बैठ जाए, एक नाक से सांस ले और दूसरी से छोड़े, और इसे विपरीत दिशा में 5 से 10 मिनट तक अभ्यास करते रहें। इससे तनाव कम करता है और पाचन क्रिया को संतुलित करता है। तो दोस्तों, योग हमेशा खाली पेट करें, तला भुना और ज्यादा मसालेदार भोजन कम करें, समय पर भोजन करें और खूब पानी पिए। याद रखिए दोस्तों, अच्छा पाचन ही अच्छी सेहत की बुनियाद है। अगर पेट स्वस्थ रहेगा तो शरीर भी ऊर्जा से भरा रहेगा। फिर मिलेंगे सुबह सवेरे के अगले योग सेगमेंट में। तब तक स्वस्थ रहिए, एक्टिव रहिए और मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, फिलहाल संदेह कार्यक्रम में ये बेहद खूबसूरत गीत आवाज दी है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने फिल्म अपनापन से।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। चाह होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, बढ़ाते हैं कार्यक्रम को आगे और बढ़ते हैं आज के हेल्थ सेगमेंट की ओर। दोस्तों, आज के हेल्थ सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं हमारे शरीर के सबसे अनमोल अंगों में से एक, यानी आंख।

आंखों के बारे में, कैसे हम आंखों की देखभाल कर सकती हैं। दोस्तों, आजकल मोबाइल, लैपटॉप और टीवी का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखों में थकान, जलन, सूखापन और सिरदर्द जैसी समस्याएं होने लगी है। इसलिए आंखों की सही देखभाल करना बेहद जरूरी हो गया है। आंखों की देखभाल क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं। पहला है साफ और स्पष्ट दृष्टि के लिए। आंखें हमें इस खूबसूरत दुनिया को देखने का मौका देती हैं। अगर हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे दृष्टि कमजोर हो सकती है। डिजिटल आई स्ट्रेन से बचाव। मोबाइल और कंप्यूटर के ज्यादा उपयोग से डिजिटल आई स्ट्रेन हो सकता है, जिससे आंखों में दर्द, धुंधलापन और पानी आना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आंखों की बीमारियों से बचाव। आंखों की सही देखभाल से कई समस्याओं से बचा जा सकता है, जैसे कंजंक्टिविटिस यानी आई इन्फेक्शन, ड्राई आईज, आंखों की एलर्जी, सिरदर्द और थकान से राहत। कई बार लगातार स्क्रीन देखने से सिरदर्द और मानसिक थकान भी होने लगती है। सही आई केयर से यह समस्या कम हो सकती है। तो दोस्तों, आंखों की देखभाल के आसान टिप्स अब मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूं। पहला है 20-20-20 नियम अपनाएं। हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 फुट दूर देखें। पर्याप्त नींद लें। रोज कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद आंखों को आराम देती है। आंखों को बार बार धोएं। साफ पानी से दिन में 2 से 3 बार आंखों को धोना फायदेमंद होता है। पौष्टिक आहार लें। डाइट में शामिल करें गाजर, पालक, बादाम, आंवला, ये आंखों की रोशनी के लिए अच्छे माने जाते हैं। धूप में सनग्लास पहने। तेज धूप और धूल से आंखों को बचाने के लिए सनग्लास जरूर पहने। आंखों की एक्सरसाइज करें। रोज कुछ मिनट फार्मिंग, ब्लिंकिंग और आई रोल एक्सरसाइज करें। याद रखिए दोस्तों, आंखें हमारे जीवन की रोशनी है। अगर हम रोज थोड़ा सा समय इनकी देखभाल में लगाए तो हमारी दृष्टि लंबे समय तक स्वस्थ रह सकती है। इसी के साथ खत्म होता है आज का हेल्थ सेगमेंट। फिर मिलेंगे एक नई हेल्थ टिप के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपनी आंखों का ख्याल रखिए। दोस्तों, आज के सुबह सवेरे के कार्यक्रम के अंत में चलिए सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत। फिल्म नदिया के पार से आवाज है जसपाल सिंह और हेमलता का।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का सुबह सवेरे कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आपातानी श्रोताओं का समाचार।

0: श्रोताओ, आप सुन रहे थे कालो श्रोताओं का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। अब आप सुन पाएंगे आपातानी श्रोताओं का कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी ईटानगर जीरो सर्वप्रथम प्रोग्रामिंग मिले भाई कपिजा पसंद तन पुमी तपतलो सर्वपुमी लोग नरेंद्र मोदी ला इटली का प्राइम मिनिस्टर गिर्गियो मेलोनी रोमोकला जॉइंट स्टेटमेंट बिला लुकला लुने इंडिया ला इटाली गांधी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर ट्रेड इन्वेस्टमेंट और सप्लाई चेन आतानी उरो यापा मलमा गरोपा और तलता सरोपा लुज लुमे स्तुला दोहला लुकला लुपाने इनकुन वेनेस्टे लो यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ज्योति रदिया एम सिंधियाई सिंधियाला चीफ मिनिस्टर पेमा खांडुनी सोशल मीडिया पोस्ट मला लुकला लुने सेंट्रल गवर्नमेंट के डायोक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अटाओ किवी मुना तंपा तो 167 करोड़ में बिकिंडो खला ओसकत कोलो किवी मुना तामी ऊरोपा हाथाशा केन होला लुकला लुपाने तत्सदे चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू किवी गुरुवार प्रमाण मी वतामी ला मोक देव गाना हेम पिपु मी बिला और खरापा प्रमिस्टर नरेंद्र मोदी मलामी बूथ मी के दयोक पायारोपा चोला लुकोला मुतिहला लुकोला लुपाने बुजियालो 14 डिवी मुख एमएलए नवम विवेक गुमतो सर्कल ऑफिसर का ऑफिस मी नीति बोलरे गाड़ी दौरे मी बिटिहला ओहरापा 14 प्रमुख एमएलए नवम विवेक लुकुने तने आईने म्योरु म्योलो संगडु पुटूर और तारासो सर्कल आतमलामी बीरोपम किंडो हला को ततुदायो गुमतो सीओ ऑफिस के रेकु लुकुने ने एमएलए नवम विवेक मी हैप्पी पुर मी बिला और बोलेरो गाड़ी में पब्लिक सर्विस यूज मरोपा मुची हला लुकला लुपाने डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के दायोक सिगरेट एंड अदर टोबेको प्रोडक्ट एक्ट 2003 में हेमदोला ऑफिशियली पता कौमी बिलिंग ला मुतिहला उसको पता बिलिंग को कोने भी हॉस्पिटल और हेल्थ केयर प्रमिसेस आता हूँ टोबेको फ्री जोन दोपा मधुकुपा मुत तेहला के तिहला लुकला लुपाने तत्दायो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के दायोक बूथ में आतामी और पेशेंट और हेल्थ केयर वर्कर्स हॉस्पिटलों का काम वाले मुन आतामी तब को प्रिजन डोपा लुनिमी तलता ला मुरपा मुत तेला मोर के दायोक एपिल वाला मुत पुई पता भी करने क्लू को ने दिसी नामसाय सियार खंपक खंपक बुजो आलो नामसाय गंडाओ रीजनल ट्रेनिंग ऑन सब नेशनल मलेरिया एलिमिनेशन वेरिफिकेशन का अलो लो हैं पकड़ ट्रेनिंग दो न कमी इनोवेशन में गोगल ग्लामित ओसे का रीजनल ट्रेनिंग ऑन सब नेशनल मलेरिया एलिमिनेशन वेरिफिकेशन में को आजाना खुआई डिस्ट्रिक्ट का रिप्रेजेंटेटिव आतमला पार्टिसिपेट लाभ नाला मुत्ते हला लुकला लुपाने बुजालो डीसी ऑफिस कॉन्फ्रेंस हॉल इंकेंगो डीसी कम डीईओ अपर सियांग तलो जेरांग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्टोरल रोल का मीटिंग का कमी दुखुंगला मुत्ते डीसी कम डीईओ अपर सियांग तलो जेरांग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्टोरल रोल का पुरोय वातामी चौंसगला और पोसा पोंसा पॉलिटिकल पार्टीज और हेड ऑफ डिपार्टमेंट आतामी एक्टिवली कोऑपरेशन मोर का विरोपा मुत तेहला लुगला लुते पुईपोता भी कोने लुको ने इनकुन वेनेसिया लो सिटंग लेंबाओ ओक खरापा उरो आजेला आजे उरो आतां फॉर्मेली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू अकोमी सेंग अपर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट मी फ्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट मुगकन दुपा हला सानमुई चला मुतकु हला ओसका साइन मी बोलिंग हेडक्वार्टर का डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस हो साइन मी मुतिहला लुकला लुपाने तत्दे लुकुने अजन पीनेला पजे उरुआतांग के अजन कनवेला आको उरुआतांग स्लोले पा साइन मुव तोला तो कुहला लुपला लुपाने सुरकतन पुलु को सने हम कने
2: सुरकतन विस्परगा मिमलेम भई काफी जा पसुनो गेट गंबो का हेंसा हलका बसने मिता पतो दो

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आपातानी श्रोताओं का समाचार, और आगे के कार्यक्रमों को आप हमारे मीडियम वेव चैनल में सुन सकते हैं। फिलहाल आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट के साथ इस छोटे से अंतराल के बाद। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम मॉर्निंग

में मध्य पूर्व संकट और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच भारत सरकार लगातार स्थिति की समीक्षा कर रही है। बताया जा रहा है कि रुपये में गिरावट को रोकने के लिए आरबीआई ब्याज दर बढ़ाने जैसे विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की वरीय प्रशासनिक बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में मिनिमम इंटरफेरेंस मैक्सिमम सपोर्ट का मंत्र दिया। सरकार ने साफ किया कि आम लोगों को कम से कम सरकारी दखल और जरूरत पड़ने पर अधिकतम सहायता देने की नीति पर काम होगा। दिल्ली बॉर्डर पर ट्रांसपोर्टों की हड़ताल। गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में ट्रांसपोर्ट यूनियन ने ईंधन कीमतों के विरोध में 3 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है। दिल्ली आने वाले कई ट्रकों को बॉर्डर पर रोक दिया गया, जिससे सप्लाई चेन और सामान ढुलाई प्रभावित हो सकती है। आरबीआई बोर्ड की अहम बैठक आज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बोर्ड मीटिंग आज हो रही है, जिसमें केंद्र सरकार को रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफर पर फैसला लिया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह राशि 2.7 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ तक हो सकती है। यूजीसी नेट आवेदन की तारीख बढ़ी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने छात्रों को राहत देते हुए यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 23 मई तक आवेदन कर सकेंगे। भारत के पैरा आर्चर का बयान चयन, बड़ा चयन। राजस्थान के पैरा आर्चर श्याम सुंदर स्वामी का चयन 2026 पारा एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में हुआ है। यह लगातार तीसरी बार है जब वे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आइए रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर एक नजर। अमेरिका ईरान तनाव और बढ़ा। अमेरिकी मराइन्स ने गल्फ ऑफ ओमान में एक ईरानी तेल टैंकर को रोककर उसकी जांच की। इस घटना के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। गाजा मुद्दे पर वैश्विक नाराजगी। गाजा के लिए सहायता ले जा रहे फ्लोटिला एक्टिविस्ट के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर कई देशों ने इसराइल के खिलाफ नाराजगी जताई है। कनाडा, जर्मनी, स्पेन और ब्रिटेन समेत कई देशों ने कूटनीतिक विरोध दर्ज कराया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोप में सुरक्षा चिंता। यूक्रेनी ड्रोन हमले और रूस यूक्रेन तनाव के कारण यूरोप में सुरक्षा चिंताएं बढ़ी है। जर्मनी समेत कई यूरोपीय देशों ने अतिरिक्त सुरक्षा उपाय शुरू किए हैं। वैश्विक एआई निगरानी पर अमेरिका का नया कदम। अमेरिका में एआई और साइबर सिक्योरिटी को लेकर नई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स तैयार किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य एआई सिस्टम की सुरक्षा जांच और निगरानी में मजबूत करना है। विश्व भर में यात्रा सुरक्षा अलर्ट। अमेरिकी विदेश विभाग ने दुनिया भर में अपने नागरिकों के लिए वर्ल्ड वाइड कॉशन एडवाइजरी जारी की है। विशेषकर मध्य पूर्व में यात्रा करने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। संयुक्त राष्ट्र में परमाणु हथियारों पर बड़ी बैठक। संयुक्त राष्ट्र में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी रिव्यू कॉन्फ्रेंस का समापन आज हो रहा है। इसमें परमाणु हथियार नियंत्रण और वैश्विक सुरक्षा पर चर्चा हुई। तो दोस्तों, ये था आज के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुख्य खबरें। चलिए रुक करते हैं राजधानी ईटानगर से प्रकाशित अरुणाचल टाइम्स अखबार के मुख्य सुर्खियों पर एक नजर। फॉरेस्ट फायर इंस्पेक्शन टर्न्स वायलेंट। दिबांग घाटी जिले में जंगल की आग के निरीक्षण के दौरान कथित तौर पर तब हिंसा भड़क उठी जब पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का सामना उन स्थानीय किसानों से हुआ जो पारंपरिक झूम खेती से जुड़े नियंत्रित आग जलाने की प्रक्रिया को अंजाम दे रहे थे। अपसू सीक्स एजुकेशनल रिफॉर्म्स अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस। ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन अपसू का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व इसके अध्यक्ष मेजर ताकू कर रहे थे, ने बुधवार को यहां शिक्षा मंत्री पीडी सोना से मुलाकात की और 27 बिंदुओं वाला एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में अरुणाचल में सभी स्तरों पर दूरदराज के गांवों के प्राथमिक विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों और पेशेवर संस्थानों तक तत्काल शिक्षक सुधारों की मांग की गई है। मिशन कीवी टू पावर अरुणाचल फार्मर्स डीसीएम। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने गुरुवार को मिशन अरुणाचल कीवी अरुणाचल प्रदेश की यूएसपी की शुरुआत की सराहना करते हुए इसे एक ऐसा परिवर्तनकारी कदम बताया
जिसका उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना और राज्य में विश्व स्तर पर

प्रतिस्पर्धी ऑर्गेनिक कीवी इकोसिस्टम तैयार करना है। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने डीसी अर्जेस पार्टीज टू अपॉइंट बीएलएस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर प्रक्रिया के सफल संचालन को सुनिश्चित करने में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए अपर सियांग के डीसी सह डीईओ तालो जेरांग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सलाह दी कि वे आपस में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें और बूथ स्तर के एजेंट यानी बीएलएस नियुक्त करें। ये एजेंट एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बूथ स्तर के अधिकारियों की सहायता करने में अहम भूमिका निभाएंगे। हॉस्पिटल्स हेल्थ केयर प्रमाइसिस डिक्लेयर टोबैको फ्री जोन्स। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने पूरे राज्य के सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को आधिकारिक तौर पर तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। पुलिस डिटेन एक्सटर्न 19% फॉर आईएलपी वायलेशन। ईस्ट सियांग जिले की पुलिस ने जो बुधवार को रुकसिन पुलिस स्टेशन पर तैनात थी 19 लोगों को हिरासत में लिया। ये लोग रुकसिन चेक गेट के रास्ते बिना वैध इनर लाइन परमिट के राज्य में प्रवेश कर रहे थे। ट्रैफिक रेगुलेशन मेजर्स इनिशिएटेड इन रुकसिन। बढ़ते ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने और वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के प्रयास में रुकसिन पुलिस स्टेशन के प्रभारी ओसी एसआई जोनी तासुंग ने मंगलवार को पूर्वी सियांग जिले में ट्रैफिक नियंत्रण के उपाय शुरू किए। बेबीज डिलीवर्ड इनसाइड एम्बुलेंस। गुरुवार को 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने दो अलग अलग मामलों में दो स्वस्थ बच्चों को जन्म दिलाने में मदद की। पहली घटना सुबह 5:37 बजे हुई जब कुंसा के तिराप जिला अस्पताल से एक गर्भवती महिला को एएमसी डिब्रूगढ़ रेफर किया गया था। उसकी हालत गंभीर थी। उसे प्रेगनेंसी के तय तारीख गुजर जाने के बाद होने वाली दिक्कतें, बच्चों को तकलीफ होने और प्रसव में रुकावट जैसी समस्याएं थी। रास्ते में उसे प्रसव के तेज दर्द होने लगा। ईएमटी न्याहोंग डेंगसिया और पायलट लोंगतंग कांगो ने तुरंत स्थिति की संभाला। हंगपन डारा मेमोरियल टूर्नामेंट डे 6 रिजल्ट एंड क्वार्टर फाइनल पिक्चर्स। 9वीं राज्य स्तरीय हंगपन डारा मेमोरियल ट्रॉफी फुटबॉल और वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2024 के लीग चरण के छठे दिन वॉलीबॉल के मुकाबले जारी रहे, जिसमें पूरे अरुणाचल प्रदेश से आई टीमों ने अपना दृढ़ संकल्प, आपसी तालमेल और प्रतिस्पर्धा भावना का शानदार प्रदर्शन किया। लड़कों की वॉलीबॉल श्रेणी में लोहित ने लपारादा पर कड़े संघर्ष के बाद 2-1 से जीत हासिल की, जबकि अपर सुबनसिरी ने वेस्ट सियांग के खिलाफ 2-0 से एक निर्णायक जीत दर्ज की। वेस्ट कामिंग ने कामले को एक रोमांचक मुकाबले में 2-1 से मात दी और करादादी ने चांगलांग को आसानी से 2-1 से हरा दिया। कुरुमकुमे ने भी अपना दबदबा कायम रखते हुए कई पानियों को 2-1 से पराजित किया। तो दोस्तों, ये था आज का न्यूज सेगमेंट। आप इस वक्त सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट। फिलहाल सुनते हैं कार्यक्रम में ये बेहद खूबसूरत गीत। फिल्म रावण से आवाज दी है विशाल ददलानी, श्रुति पाठक और एकोन ने।

0: जय है हरि मुनि नानि अहंगक गे आने गे दिरिने है बोरेलो तमंगा दिरिबे बोग्याने तकोला मुक गे है।
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे तागिन श्रोताओं का समाचार और आगे के कार्यक्रमों को आप हमारे मीडियम वेब चैनल में सुन सकते हैं। आप इस वक्त बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम सदाबहार के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार अरुणाचल। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। मैं हूं आपका अपना आरजे कार्ग और शुरू हो चुका है आपका फेवरेट म्यूजिकल प्रोग्राम सदाबहार। दोस्तों इस खूबसूरत शो में हम लेकर आते हैं ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के ताजा मौसम अपडेट्स, ताकि आप जान सके कि आज दिन भर मौसम का मिजाज कैसा रहेगा। और मौसम के इन प्यारी सी बातों के साथ साथ हम आपके लिए लाते हैं कुछ मजेदार सदाबहार गीतों को। तो आइए देखते हैं आज के मौसम का हाल। सुबह का मौसम, आज सुबह ईटानगर में मौसम काफी फ्रेस और फ्रीजन महसूस हो रहा है। हल्की ठंडी हवा चल रही है और आसमान में धूप बादलों का खूबसूरत मेल देखने को मिल सकता है। तापमान करीब 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है। और दोपहर का हाल, दोपहर तक धूप अच्छी तरह खिल जाएगी, तापमान बढ़कर लगभग 30 से 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम थोड़ा ह्यूमिड महसूस हो सकता है, लेकिन तेज हवाएं बीच बीच में राहत देती रहेगी। और आसमान का हाल हम देखें तो आज पूरे दिन मौसम मोस्टली पार्टली क्लाउडी तो सनी रहने वाला है, यानी कभी अच्छी धूप तो कभी हल्के बादल, लेकिन ओवरऑल दिन ब्राइट और खुला रहेगा। बारिश की संभावना, शाम के समय कहीं कहीं हल्की फुहार या बहुत हल्की बारिश के चांसेस बन सकती है, लेकिन पूरे दिन भारी बारिश जैसी स्थिति नहीं दिख रहे हैं। शाम का मौसम, शाम होते होते मौसम काफी सूटिंग और कूल हो जाएगा। तापमान गिरकर करीब 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाएगा और हल्की हवा शाम को और भी खूबसूरत बना देगी। रात में मौसम आरामदायक रहेगा, आसमान में हल्के बादल रह सकते हैं और तापमान करीब 22 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। तो कुल मिलाकर दोस्तों आज ईटानगर में मौसम रहेगा धूप, हल्की बादल और ठंडी हवाओं के साथ साथ एक प्लेजेंट और रिफ्रेशिंग डे। तो अगर बाहर जाने का प्लान है तो आज का मौसम आपका पूरा दिन साथ देने वाला है। और अब इसी प्यारे मौसम के साथ सुनते हैं एक प्यारा सा दिल को छू लेने वाला सदाबहार गीत लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म फर्स्ट लव लेटर से।

0: दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सदाबहार। हम लौटेंगे सदाबहार कार्यक्रम के एक और सदाबहार गीत के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद।
1: नमस्कार अरुणाचल। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान

दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का सदाबहार कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। दोस्तों, अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज तथा शिलोंग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज।
1: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: वाणिज्य और

0: उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में 1 जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
1: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
6: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
5: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
7: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थंकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में 1 से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
5: सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज 2 और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। वीसीके के वन्नी यारासु और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
8: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
5: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमित्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $500,000 की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
9: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है 65 समझौते, यूएई से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्य के शब्द हैं 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है पीओके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में लिए गए निर्णयों पर समाचार दिया है। सरकारी कामकाज में लेट लतीफी पर पीएम सख्त, मंत्रियों को तेजी से परिणाम देने का अल्टीमेटम, मंत्रालयों और नीति आयोग ने पेश की कार्य योजना। 35 शहरों में रात का पारा 30 पार, दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पंजाब केसरी लिखता है हीट स्ट्रोक का कहर, 2 मरीज अस्पताल में भर्ती। नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय पन्ने पर हंता वायरस पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है वायरस कहीं आतंकी न बन जाए, कोरोना और हंता वायरस ने बढ़ाई तकनीकी विकास के गलत इस्तेमाल की चिंता। संपादक लिखता है, दुनिया को अब फिक्र सता रही है कि आने वाले दिनों में कहीं आतंकी संगठन वायरसों का इस्तेमाल न करने लगे।
5: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में 1 जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis in New Delhi today. First International Big Cat Alliance Summit scheduled to take place in New Delhi on June 1st, postponed. Railways urges passengers to remain alert and immediately report any suspicious activity or individual on railway premises on helpline number 139. Calcutta High Court orders setting up special team of CBI to probe hushing up charges in RG Kar rape murder case. Pulwama terror attack mastermind Hamza Burhan killed by unknown gunmen in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. US Secretary of State Marco Rubio says Washington is ready to sell as much energy as India is willing to buy. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Chennai Super Kings by 89 runs in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, in New Delhi today. He was received by Union Minister of State for Road Transport and Highways, Ajay Tamta, at the Delhi airport. He is accompanied by a high-level delegation comprising Minister of Foreign Affairs, Dr. Konstantinos Kombos, Minister of Transport, Communications and Works, Alexis Vefaidis, senior officials and business leaders. This is the first visit of President Christodoulidis to India in his current capacity. A report.
11: Prime Minister Narendra Modi and the President of Cyprus will hold discussions on further strengthening bilateral cooperation in various areas of mutual interest. The areas include trade, investment, technology, education, culture, mobility, defense and security, artificial intelligence, fintech, innovation and research. They will also exchange views on issues of regional and global importance, including cooperation in multilateral fora. Several agreements will be signed and exchanged after the talks. The President of Cyprus will meet President Draupadi Murmu at the Rashtrapati Bhavan today evening. The visit of President of Cyprus taking place within a year of the historic visit of Prime Minister Narendra Modi to Cyprus in June last year, which was the first visit by an Indian Prime Minister to Cyprus in over 2 decades. This visit also assumes added significance in view of Cyprus's ongoing presidency of the Council of the European Union. India and Cyprus share close and time-tested partnership. The two countries will mark

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज तथा शिलोंग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है जिसका प्रसारण किया जा रहा है अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम हेलो ईटानगर के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद।
1: नमस्कार अरुणाचल। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: हेलो ईटानगर।

नमस्कार दोस्तों, आप इस वक्त सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो ईटानगर। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम लाते हैं रोज टुडे इन हिस्ट्री सेगमेंट और देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट डे के बारे में। तो सबसे पहले आइए देखते हैं टुडे इन हिस्ट्री सेगमेंट में। सबसे पहले आइए देखते हैं भारत के इतिहास के पन्नों में क्यों खास है 22 मई। वर्ष 1772 में राजा राम मोहन रॉय का जन्म हुआ। आज ही के दिन महान समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय का जन्म हुआ था। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। वर्ष 1989 अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण। 22 मई वर्ष 1989 को भारत ने अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह भारत की रक्षा और मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। 2004 में नई सरकार का गठन। 22 मई 2004 को मनमोहन सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वे भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री बने। भारतीय विज्ञान और रक्षा क्षेत्र में प्रगति। 22 मई के दिन भारत ने विभिन्न वर्षों में रक्षा तकनीक और शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम योजनाओं की शुरुआत की, जिसने देश की आत्मनिर्भर बनाने में मदद की। दोस्तों, आइए रुक करते हैं 22 मई को हुई प्रमुख घटनाएं विश्व स्तर में। वर्ष 1907 चिली में भीषण भूकंप। 22 मई 1907 को चिली में दुनिया का सबसे शक्तिशाली भूकंप आया था। इसकी तीव्रता 9.5 मापी गई थी। इस भूकंप और सुनामी में हजारों लोगों की जान गई। 1906 राइट ब्रदर्स की को विमान का पैटेंट। राइट ब्रदर्स को 22 मई 1906 को उनके विमान के आविष्कार के लिए पैटेंट मिला। इस आविष्कार ने दुनिया की यात्रा और परिवहन व्यवस्था बदल दी। वर्ष 1990 विंडोज 3.0 लॉन्च। माइक्रोसॉफ्ट ने 22 मई 1990 को विंडोज 3.0 लॉन्च किया। इसने पर्सनल कंप्यूटर्स की दुनिया में नई क्रांति ला दी। 2010 एयर इंडिया एक्सप्रेस दुर्घटना। 22 मई 2010 को एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 क्रैश मंगलुरु में दुर्घटनाग्रस्त हुई। यह भारत की बड़ी विमान दुर्घटनाओं में से एक मानी जाती है। तो दोस्तों, 22 मई का दिन भारत के समाज सुधार, विज्ञान और रक्षा शक्ति की उपलब्धियों के साथ साथ विश्व इतिहास की कई बड़ी घटनाओं का गवाह रहा है। इतिहास हमें सिखाते हैं कि ज्ञान, तकनीक और साहस से ही भविष्य मजबूत बनता है। और अब इसी खूबसूरत सोच के साथ चलिए बढ़ते हैं एक सूटिंग म्यूजिकल ब्रेक की ओर। सुनते हैं ये प्यारा सा गीत श्रेया घोषाल, जावेद वासिर और यूसुफ के आवाजों में, फिल्म भाग मिल्खा भाग से।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम हेलो ईटानगर। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज यानी 22 मई को कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। ये दिन खास तौर पर प्रकृति, पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण के लिए समर्पित है। आज इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी दिवस है यानी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। हर साल 22 मई को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी मनाया जाता है। यह दिवस यूनाइटेड नेशंस द्वारा घोषित किया गया है। जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी क्या होती है? जैव विविधता का मतलब है धरती पर मौजूद सभी प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, पक्षी, समुद्र जीव और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, यानी हमारी पृथ्वी पर जीवन के विविधता की ही बायोडायवर्सिटी कहलाती है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना कि प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा क्यों जरूरी है, पेड़ पौधे और वन्य जीव हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से जैव विविधता को कितना खतरा है। जैव विविधता को खतरे आज कई कारणों से प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, जैसे जंगलों की कटाई, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, शिकार और अवैध वन्य जीव व्यापार। इन कारणों से कई जीव जंतु विलुप्त होने की कगार पर है। और इस साल यानी 2024 की थीम है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजी

बायोलॉजिकल डायवर्सिटी 2026 का थीम है हार्मोनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्थात प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर विकास करना। हम क्या कर सकते हैं? छोटे छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं दोस्तों। जैसे ज्यादा पेड़ लगाएं, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करें, पानी बचाएं, वन्य जीवों और प्रकृति की रक्षा करें। तो दोस्तों 22 मई हमें याद दिलाता है कि अगर प्रकृति सुरक्षित है तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित है। धरती सिर्फ इंसानों की ही नहीं बल्कि हर जीव जंतु और पेड़ पौधे की भी है। और अब इसी खूबसूरत संदेश के साथ चलिए बढ़ते हैं एक और प्यारा सा गीत के लिए और सुनते हैं जहर फिल्म से आतिफ असलम के आवाज में ये अगला गीत।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का हेलो ईटानगर कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में बारी बारी में समाचार।

0: नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में 1 जून को होने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन चतुर्थ के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं और संरक्षण, पारिस्थितिकी स्थिरता और जैव विविधता संरक्षण के वैश्विक प्रयासों में महत्वपूर्ण भागीदार भी हैं। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। यह आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।

0: 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। विदेश मंत्री ने स्वीडन और भारत की यात्रा पर रवाना होने के दौरान पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है, वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के ये बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय की आज जयंती है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजा राममोहन राय को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि ब्रह्म समाज की स्थापना के माध्यम से इन्होंने लोगों को सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों और असमानताओं के विरुद्ध जागरूक किया। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुति है अब अगला कार्यक्रम फिल्मी गपशप। दोस्तों, यहाँ हम हर दिन आपके लिए बॉलीवुड की प्रेस गॉसिप, लेटेस्ट मूवी रिव्यूज, ओटीटी प्लेटफॉर्म के ट्रेंडिंग शोज और वेब सीरीज अपडेट्स, टेलीविजन वर्ल्ड की इनसाइड स्टोरीज और वायरल सॉन्ग्स, डांस रील्स और सेलिब्रिटी बज की फुल ऑन डोज देते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मचा रही है धमाका, कौन सी स्लैम और कंट्रोवर्सी में आ गया है, तो आप इस वक्त सही जगह पे हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के फिल्मी गपशप का, ये बॉलीवुड के ताजातरीन अपडेट से। रामायण बनने से पहले ही बना रही है रिकॉर्ड्स। दोस्तों, रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण रिलीज से पहले ही हिस्ट्री क्रिएट करती दिख रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स हिंदी थियोरेटिकल राइट्स से लगभग 450 करोड़ कमाने की प्लानिंग में है। वहीं डिजिटल राइट्स के लिए 1000 करोड़ तक की डील टारगेट की जा रही है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो ये इंडियन सिनेमा के बिगेस्ट प्री रिलीज बिजनेस डील्स में से एक बन जाएगा। अभी फिल्म रिलीज भी नहीं हुई और बॉक्स ऑफिस ऑलरेडी धरने लगा है। धुरंधर द रिवेंज इन ओटीटी वर्ल्ड में मचाया कंफ्यूजन। दोस्तों, आज की सबसे ट्रेंडिंग ओटीटी न्यूज यही है, धुरंधर रॉ एंड अनदेखा वर्जन। यानी आज 22 मई को दो प्लेटफॉर्म्स यानी नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार दोनों पर रिलीज हो रही है। फैंस कंफ्यूज है कि आखिरकार ऑफिशियल स्ट्रीमिंग पार्टनर कौन है, लेकिन एक्साइटमेंट इस बात की ज्यादा है कि ओटीटी वर्जन में कई एक्स्ट्रा एक्शन सीन्स और अनकट फुटेज देखने को मिलेगा। तो थिएटर वर्जन से ज्यादा डेंजरस होने वाला है ओटीटी वाला धुरंधर। चांद मेरा दिल की फर्स्ट रिव्यू रिएक्शन सामने आए। अनन्या पांडे और लक्ष्य की रोमांटिक ड्रामा चांद मेरा दिल आज थिएटर्स में रिलीज हो रही है। अर्ली रिव्यूज के मुताबिक फिल्म टिपिकल बॉलीवुड लव स्टोरी नहीं है, इमोशनल स्टोरी टेलिंग और म्यूजिक की तारीफ हो रही है। फैंस खासकर फिल्म के विजुअल्स और केमिस्ट्री को लेकर एक्साइटेड हैं। लगता है इस वीकेंड रोमांस लवर्स की लॉटरी लगने वाली है। दोस्तों, हम लौटेंगे अन्य ताजा तरीन अपडेट्स के साथ। फिलहाल लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, सुनते हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा से ये खूबसूरत गीत।

तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप। दोस्तों, कंगना रनौत की नई अपीयरेंस सोशल मीडिया पर वाइल्ड फायर की तरह फैल रही है। वे मंगलसूत्र और ग्रीन बैंगल्स में नजर आई। इसके बाद फैंस पूछने लगे क्या कंगना सेक्रेटली शादी कर चुकी हैं। हालांकि कई लोग मान रहे हैं कि ये लुक शायद उनकी अपकमिंग फिल्म क्वीन 2 के कैरेक्टर का हिस्सा हो सकता है। कंगना जहां होती है वहां हेडलाइंस खुद बन जाती है। ऐश्वर्या राय बच्चन आखिर कांस के लिए रवाना। कुछ दिनों से रूमर्स चल रहे थे कि ऐश्वर्या इस साल कांस अटेंड नहीं करेगी, लेकिन आज वो अपनी बेटी आराध्या के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई और फैंस के एक्साइटमेंट डबल हो गई। अब फैंस ईगरली वेट कर रहे हैं उनके आइकॉनिक कांस रेड कार्पेट लुक का। कांस का रेड कार्पेट ऐश्वर्या के बिना अधूरा लगता है। रणवीर सिंह का इमोशनल स्पोर्ट्स मोमेंट वायरल। दोस्तों, रणवीर सिंह का आज फुटबॉल फैंस के बीच ट्रेंड कर रहे हैं। उनके फेवरेट क्लब आर्सेनल ने 22 साल बाद प्रीमियर लीग जीत ली। रणवीर ने इमोशनल नोट शेयर करते हुए लिखा कि प्राइड एंड ग्लोरी इज रिस्टोर्ड। रणवीर का एनर्जी लेवल वैसे ही हाई रहता है, आज तो खुशी डबल हो गई।

0: दोस्तों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर कार्यक्रम फिल्मी गपशप। पति पत्नी और वो धोखे धीरे धीरे पकड़ बना रही है। आयुष्मान खुराना की कॉमेडी ड्रामा फिल्म अब स्टडी कलेक्शन दिखा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म वर्ल्ड वाइड 40 करोड़ के करीब पहुंचने वाली है। हालांकि ऑडियंस रिव्यूज मिक्स्ड हैं। कुछ लोग कॉमेडी एंजॉय कर रहे हैं तो कुछ इसे प्रेडिक्टेबल बता रहे हैं। फिल्म स्लो स्टार्ट के बाद अब वीकेंड बूस्ट का इंतजार कर रही है। अमिताभ बच्चन का क्रिप्टिक पोस्ट फिर चर्चा में। बिग बी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक मैसेज पोस्ट किया, बौखला गए लोग। इसके बाद फैंस फिर उनके हेल्थ रूमर्स को लेकर बातें करने लगे। हालांकि ऑफिशियली कोई सीरियस अपडेट सामने नहीं आया है। बिग बी का एक छोटा पोस्ट भी पूरे इंटरनेट को डिस्कशन मोड में डाल देता है। कॉकटेल टू म्यूजिक कंट्रोवर्सी शुरू। दोस्तों, शाहिद कपूर और कृति सेनन की अपकमिंग फिल्म कॉकटेल टू का नया सॉन्ग माशुका खूब ट्रेंड कर रहा है, लेकिन कुछ यूजर्स ने इसे कॉपी ट्यून बताया। म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम ने इन प्लेगरिज्म क्लेम्स पर रिएक्शन देते हुए ट्रोल्स को जवाब दिया, बॉलीवुड सॉन्ग हिट हो और कंट्रोवर्सी ना हो ये तो इम्पॉसिबल है। वरुण धवन की फिल्म लॉन्च इवेंट अचानक कैंसल। है जवानी तो इश्क होना है का ट्रेलर लॉन्च अचानक कैंसिल कर दिया गया। रिपोर्ट्स में लीगल इश्यू की बात सामने आ रही है। अब फ्रेंड्स नए डेट अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे हैं। रिलीज से पहले ड्रामा शुरू, मतलब फिल्म ऑलरेडी हेडलाइंस में है। तो दोस्तों, ये थी 22 मई की सबसे प्रेस बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड अपडेट्स, जहां ग्लैमर भी है, गॉसिप भी, कंट्रोवर्सी भी और नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट भी। फिलहाल कार्यक्रम में सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत, उदित नारायण, सुनिधि चौहान और गुलजार की आवाजों में फिल्म बंटी और बबली से।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं। ये मैं नहीं, ये वो दोनों कहते थे और कहते क्या थे, करते थे, और ऐसा करते थे जैसा ना किसी ने किया और ना शायद कोई कर पाएगा।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा शो फिल्मी गपशप में। दोस्तों, वीकेंड आ चुका है, मतलब टाइम है ब्लैंकेट पॉपकॉर्न और नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट का। तो चलिए जानते हैं इस वीकेंड ओटीटी पर क्या बिंज वॉच करना चाहिए, कौन से अपकमिंग फिल्म्स सबसे ज्यादा चर्चा में हैं और कौन सी बॉलीवुड सॉन्ग रील्स पर आग लगा रही है। सबसे पहला है सिस्टम, ये प्राइम वीडियो प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। सोनाक्षी सिन्हा की इंटेंस लीगल ड्रामा सीरीज कोर्टरूम पॉलिटिक्स प्लस सस्पेंस और इमोशनल ट्विस्ट, ये एक स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, ग्रिपिंग स्टोरी टेलिंग और थ्रिलर वाइब्स वाला सीरीज है। अगर आपको कोर्टरूम ड्रामा पसंद है तो ये सीरीज आपको स्क्रीन से हटने नहीं देगी। अगला है धुरंधर रो एंड अनदेखा, ये नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार पर आज से स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। तो थियोरिटिकल वर्सन से ज्यादा ब्रूटल और अनकट एक्शन देखने को मिलेगा। तो एक्स्ट्रा सीन्स और डार्कर स्टोरी टेलिंग ऑलरेडी ट्रेंड में है। तो मास सिनेमा लवर्स, आपका वीकेंड ऑफिशियली बुक्ड हो चुका है। अगला है लेडीज फर्स्ट, ये नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग की जा रही है। सटारिकल कॉमेडी ड्रामा जेंडर रोल रिवर्सल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो ऑडियंस कॉन्सेप्ट को काफी फ्रेश बता रही है। तो कॉमेडी के साथ सोशल मैसेज यानी एंटरटेनमेंट प्लस थिंकिंग दोनों है इसमें। अगला है जैक रायन का गोस्ट वर, ये भी प्राइम वीडियो प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ये एक्शन एस्पियोनेज इंटरनेशनल मिशंस वाला एक हॉलीवुड स्टाइल थ्रिलर लवर्स के लिए परफेक्ट बिंज है। तो इस वीकेंड एक्शन का लेवल इंटरनेशनल होने वाला है। अगला है द ब्रोग, ये भी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। सुपर नेचुरल मिस्ट्री सीरीज, हॉरर प्लस सस्पेंस और साइकोलॉजिकल ट्विस्ट वाला, तो लेट नाइट वॉच के लिए परफेक्ट स्पूकी थ्रिलर है। तो दोस्तों, ये था इस वीकेंड पर रिलीज होने वाले कुछ अपकमिंग वेब सीरीज और फिल्म्स के बारे में जानकारी। फिलहाल फिल्मी गपशप में सुनते हैं एक और अगला खूबसूरत गीत, बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक के युगल आवाजों में फिल्म हम तुमसे।

दोस्तों इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम फिल्मी गपशप। आइए एक नजर डालते हैं अपकमिंग बिग फिल्म्स के रिव्यूज पर। एक नजर, सबसे पहला है चांद मेरा दिल। ये अनन्या पांडे और लक्ष्य सेन द्वारा स्टारर ये फिल्म है। इमोशनल रोमांटिक ड्रामा, विजुअल और म्यूजिक की काफी तारीफ हो रही है और पब्लिक एक्सपेक्टेशन है। यूथ ऑडियंस इसे नेक्स्ट बिग रोमांटिक म्यूजिकल बोल रही है, तो लव स्टोरी कम फीलिंग्स ज्यादा लग रही है यह फिल्म। अगला है कॉकटेल 2। शाहिद कपूर, कृति सेनन और राश्मिका मंदाना द्वारा यह स्टारर फिल्म है। स्टाइलिश विजुअल्स, पार्टी वाइब्स, इमोशनल लव ट्रायंगल। फिल्म का सॉन्ग जब तलक रील्स पर ऑलरेडी वायरल है, तो ओरिजिनल कॉकटेल नॉस्टैल्जिया प्लस मॉडर्न रिलेशनशिप ड्रामा ये ब्लॉकबस्टर वाइब्स दे रही है। अगला है रामायण, स्टार रणवीर कपूर और साई पल्लवी और यश। मेगा बजट विजुअल्स, मैसिव बीएफएक्स स्केल और ऑलरेडी रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्री रिलीज। बिजनेस रिपोर्ट्स ने ये फिल्म सिर्फ फिल्म ही नहीं बल्कि सिनेमैटिक इवेंट बनने जा रही है। और रुक करते हैं अभी के वायरल बॉलीवुड सॉन्ग्स और डांस रील्स के बारे में जो इस समय ट्रेंड कर रहे हैं। सबसे पहला है जब तलक कॉकटेल 2 फिल्म से। ये एक रोमांटिक पार्टी वाइब कपल रील्स में सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। ये सॉन्ग में ही इंस्टाग्राम का इमोशन बन चुका है। और अगला है धुरंधर टाइटल ट्रैक। जिम रील्स प्लस एटीट्यूड एडिट्स में वायरल और मास बीट प्लस पावरफुल हुक स्टेप्स के लिए, जहां ये बीट बजती है वहां ऑटोमेटिकली स्लो मोशन शुरू हो जाता है। अगला है 8 बार चांद मेरा दिल फिल्म से। इसके एस्थेटिक रील्स ट्रेंड और इमोशनल रोमांटिक एडिट्स ट्रेंड कर रहे हैं, तो सॉफ्ट रोमांस रील्स वाला ये नया फेवरेट ट्रैक बन रहा है। तो दोस्तों आइए कार्यक्रम में सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत। आवाज दी है शान और गायत्री गांजा वाला ने। फिल्म चुरा लिया है तुमने से।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम प्रेमी गपशप। तो आइए जाते जाते देखते हैं बॉलीवुड के कुछ टॉप कंट्रोवर्सीज जो लेटेस्ट ट्रेंड कर रहे हैं। रामायण की 1000 करोड़ डिजिटल डील कंट्रोवर्सी। दोस्तों, रणवीर कपूर की मेगा फिल्म रामायण रिलीज से पहले ही कंट्रोवर्सी में आ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स ओटीटी डिजिटल राइट्स के लिए लगभग 1000 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर डिबेट शुरू हो गया है कि क्या कोई फिल्म इतनी बड़ी डील रिजर्व करती है। कुछ लोग इसे इंडियन सिनेमा का बिगेस्ट गैम्बल बता रहे हैं, तो कुछ इसे बॉलीवुड की ओवर हाइप स्ट्रेटेजी कह रहे हैं। आर्यन खान की सीरीज ने बॉलीवुड पर कसा तंज। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज द बेट्स ऑफ बॉलीवुड काफी चर्चा में है। सीरीज बॉलीवुड इंडस्ट्री के डार्क पॉलिटिक्स और पे ग्लैमर पर सटायर करती है। कुछ इनसाइडर को ये फोर्ट्रेल अनकंफर्टेबल लगा। तो बॉलीवुड के अंदर की बॉलीवुड स्टोरी और वही बन गई सबसे बड़ा गॉसिप टॉपिक। तो दोस्तों, आज की फिल्मी गपशप में बस इतना ही। चलिए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: तो दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का फिल्मी गपशप कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है जिसका प्रसारण किया जा रहा है अरुण FM 103.1 MHz पर। दोस्तों, आपसे थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइट कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइट मुंबई भी जा चुके हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइट की ये पहली भारत यात्रा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में 1 जून को होने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन IAFS चतुर्थ के साथ किया जा रहा था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में RG कर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरोरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरोरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सीमा सुरक्षा बल BSF की महिला पर्वतारोहण टीम को एवरेस्ट पर्वत पर विजय प्राप्त करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री शाह ने कहा कि नारी शक्ति BSF की अजय शक्ति का

0: establishment of the Brahmo Samaj, Raja Ram Mohan Roy awakened people against social superstitions. In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Chennai Super Kings by 89 runs. Today, Sunrisers Hyderabad will take on Royal Challengers Bengaluru at the Rajiv Gandhi International Stadium. And that is the end of this news bulletin.
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों हम लौटेंगे इस छोटी सी अंतराल के बाद आपके पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद।
2: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
3: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।
1: हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना आरजे कार्ग और आप सुन रहे हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। ये वो स्पेशल प्रोग्राम है जहां आपके टेक्स्ट मैसेजेस और आपकी फेवरेट बॉलीवुड मेलोडीज सीधा हमारे स्टूडियो तक पहुंचती हैं। आप बस भेजिए हमें एसएमएस में अपना नाम, आप कहां से सुन रहे हैं, अपना फेवरेट गाना, फिल्म या सिंगर का नाम और अगर किसी कास्ट को डेडिकेशन देना चाहते हो तो वो भी। हमारा नंबर है 9436887808 और फिर हम बजाएंगे आपकी पसंद का गीत सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों तैयार हो जाइए म्यूजिक, इमोशन और यादों की एक खूबसूरत सफर के लिए। तो चलते हैं आज के पहले मैसेज की ओर। और दोस्तों अब ये पहला मैसेज आया है हमारे रेगुलर लिसनर्स टेंशन क्रो, आतुर क्रो और सरलो क्रो की तरफ से। लंगकंगसम डिस्ट्रिक्ट कार्बो अंगलोंग से आप सभी को अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर दिल से नमस्कार। इनकी फरमाइश है एक बहुत ही इमोशनल और एवरग्रीन रोमांटिक मेलोडी तेरी उम्मीद तेरा इंतजार फिल्म दीवाना से। दोस्तों ये गाना 90s के उन क्लासिक सॉन्ग्स में से हैं जो आज भी दिल के करीब महसूस होते हैं। तो टेंशन क्रो, आर्थर क्रो और सरलो क्रो जी, आपकी इस ब्यूटीफुल रिक्वेस्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

दोस्तों बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर। और ये मैसेज हमें आया है हमारे रेगुलर लिसनर्स दुर्गेश नागिनपुरे और परिवार की तरफ से, ग्राम जसवाली, डिस्ट्रिक्ट खंडवा, मध्य प्रदेश से। आप सभी को अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर दिल से नमस्कार। और दोस्तों ये गाना डेडिकेट किया गया है बाइकोन मुंडा, रमेश पात्रो और अमाल और बिमल बसुमतारी को। और गीत के बोल है तोहफा, तोहफा फिल्म तोहफा से। तो दोस्तों ये गाना सुनते ही पुराने फिल्मी दिन और डांस वाली मस्ती याद आ जाती है। तो दुर्गेश जी और पूरे फैमिली और आपकी इस जबरदस्त रिक्वेस्ट और स्वीट डेडिकेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: दोस्तों, हम लौटेंगे रेड ऑन डिमांड के अगले मैसेज के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
0: ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा शो रेडियो ऑन डिमांड में। और दोस्तों, मैसेजेस और म्यूजिक का ये सफर बढ़ता जा रहा है और अब है एक और कास मैसेज का। ये मैसेज हमें आया है रोमेश पात्रो, रूनू पात्रो और लक्की की तरफ से, गोलाघाट असम से। आप सभी को अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर दिल से नमस्कार। और दोस्तों, ये गाना डेडिकेट किया गया है अमोल, बिमल, बाइकुन, जोगिंद्र और सोनाली जी को। और इनकी फरमाइश है, मस्ती भरा और एंटरटेनिंग क्लासिक ट्रैक ये पैसा बोलता है फिल्म काला बाजारी से। दोस्तों, ये गाना अपने फन लिरिक्स और फिल्मी अंदाज के लिए काफी पसंद किया जाता है। तो रमेश पात्रो, रूनू पात्रो और लकी जी, आपकी इस जबरदस्त रिक्वेस्ट और स्वीट डेडिकेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपके पसंदीदा शो रेडियो ऑन डिमांड। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर। और ये मैसेज हमें आया है हितेंद्र दास सोनविल कुडाली असम से। आपने हमें सॉन्ग फरमाइश की है कोयला फिल्म से देखा तुझे तो गीत को सुनने का। और हितेंद्र जी, आपने इस सॉन्ग को डेडिकेट किया है आकाशवाणी ईटानगर के स्टाफ्स और परिवार को, और साथ ही आपके दोस्त मिनहाल अंकित नारायण।

और बीमल जी को। तो हितेंद्र जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला बेहतरीन गीत।

0: Modern design, advanced tech. Explore Maruti Suzuki Wagon R. Now comes with a true tall boy design, strong look and robust design. Advanced K-Series engine, ideal start-stop technology and safety features like 6 airbags, ABS with AVD.
1: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: दोस्तों इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। और दोस्तों अब आया है एक और मस्ती भरा मैसेज। ये मैसेज भेजा है बाइकुन मुंडा जी ने चराइडियो असम से। बाइकुन जी, अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आपका प्यार भरा नमस्कार। इनकी फरमाइश है एक बहुत ही फन फिल्म और रोमांटिक गाना तू जो हंस हंस के, फिल्म राजा भैया से। दोस्तों ये गाना अपनी कैची मेलोडी और मस्त अंदाज के लिए लिसनर्स को बहुत पसंद आता है।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपके पसंदीदा शो रेडियो ऑन डिमांड आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, अगला मैसेज हमें आया है जोगेंद्र रोंगपी, धोरम किरी रोंगपी, सोनाली इंगटीपी, सारिहा जान, कार्बी अंगलोंग से। आप लोगों ने हमें सॉन्ग फरमाइश की है राम तेरी गंगा मेली से, हुस्न पहाड़ों का गीत को सुनने का। और आपने इस गीत को डेडिकेट किया है आपके दोस्तों यानी अमाल, बाइकुन, रमेश, रूनू और अरुणाचल के सभी दोस्तों को। तो जोगेंद्र, धोरमकिरी, सोनाली जी, आप तीनों के फरमाइश पर लीजिए सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपके पसंदीदा शो रेडियो ऑन डिमांड। और बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर। और ये मैसेज हमें आया है सुमी पेगू जी की तरफ से, असम से। सुमी जी ने हमें सॉन्ग फरमाइश भेजे हैं मेरी लैला गीत को सुनने का। तो सुमी जी, उम्मीद करता हूँ आपके इस गीत को ही मैं प्ले कर रहा हूँ। आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत को।

दोस्तों रेडियो डिमांड के अगले मैसेज की ओर बढ़ते हैं और ये मैसेज हमें आया है सोनितपुर बालीजुरी असम से कविता एन कागिन सुतार जी की तरफ से। आप दोनों ने हमें सॉन्ग फरमाइश की है जानवर फिल्म से मेरे सपनों के राजकुमार गीत को सुनने का। तो कविता कागिन सुतार जी हमसे जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत को।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड, और हम लेते हैं आज के अगला और अंतिम मैसेज को। ये मैसेज हमें आया है असम से, भेजने वाले हैं निश

निशा जी ने हमें सॉन्ग फरमाइश की है अरिजीत सिंह की आवाज में, तेरा यार हूं मैं, गीत को सुनने का। और आपने इस गीत को डेडिकेट किया है आपके बेस्ट फ्रेंड जोहान जी को। तो निशा जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए सुनवाते हैं आपके लिए और हमारे श्रोताओं के लिए आज का रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत को।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आज का ये अंक आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम आज की पहली प्रसारण सभा के समापन पर आ पहुंचे हैं। इस सभा के कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ थे स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक ती थांगजंग तथा तकनीकी अभियंता गोलो कालो। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इसी तरह के बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, और आगे के सफर में आपके साथ होंगे आपके आरजे पूनम जी। और अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। तब तक के लिए मुझे यानी अपने रेडियो साथी कारगर विभाग को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स कल नई दिल्ली पहुंचे, उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइट्स की ये पहली भारत यात्रा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की एक एक सीट के लिए चुनाव होना है। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की एक एक सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की एक एक सीट के लिए चुनाव होना है। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की एक एक सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनित्रा अजित पवार और ऑल इंडिया अन्ना DMK सांसद सीवी षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। रेल, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। इस यात्रा के दौरान वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे और राज्य को अनेक नई रेल सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे। रेल मंत्री आज जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे और 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। इसमें पहले केवल 8 डिब्बे थे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में RG कर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरोडे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरोडे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नागरिकों से सभी प्राणियों के लिए एक साझा भविष्य बनाने में मदद करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि इस वर्ष का विषय है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करें। यह हर किसी के लिए आह्वान है कि वह जैव विविधता के नुकसान को रोकने का प्रयास करे। उन्होंने कहा कि समृद्ध जैव विविधता सतत विकास की अनगिनत चुनौतियों का समाधान है। महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की आज जयंती है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजा राम मोहन राय को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि ब्रह्म समाज की स्थापना के माध्यम से राजा राम मोहन राय ने लोगों को सामाजिक अंधविश्वासों

रूढ़ियों और असमानताओं के विरुद्ध जागरूक किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की महिला पर्वतारोहण टीम को एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई करने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि नारी शक्ति बीएसएफ की अजेय शक्ति का प्रमाण है। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: to reach 23,765 when reports last came in. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad will take on Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad today. The match will start at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी तथा अंग्रेजी समाचार। या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: श्रोतम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। श्रोता हूं, इससे पहले आप सुन रहे थे आपके चहेते आरजे कारगी रीबा के साथ हमारी पहली प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को, और अब मैं आपकी रेडियो साथी आरजे पूनम आपके लिए लेकर आई हूं बहुत से मजेदार कार्यक्रमों को आपके लिए हमारी दूसरी प्रसारण सभा में। इस प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ
1: चुनावों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में भी पूरी जिम्मेदारी से योगदान देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ के प्रहरियों ने अदम्य साहस, पराक्रम और सर्वोच्च समर्पण का परिचय दिया।
0: फिल्मी लहर
2: ऑपरेशन सिंदूर में
0: दोस्तों, इस कार्यक्रम का आपको
2: दुनिया ने
0: जो लिया गया
2: हमारी बीएसएफ
0: का कभी खुशी कभी गम से, जिसे
2: अभूतपूर्व पराक्रम
0: अलका यार ने
2: और अदम्य साहस देखा है।
0: पांडे और संगीतकार है संदेश,
2: हमारी सीमाओं पर तैनात।
0: तो दोस्तों, इस बेहतरीन गीत का
2: बीएसएफ के जाबाज
0: सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी श्रोताओं
2: की सुरक्षा की अभेद चट्टान है।
1: अभियान में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर प्रहरियों की गाथाएं राष्ट्र की सामूहिक स्मृति में सदैव अमर रहेंगी। गृह मंत्रालय सदैव बीएसएफ के लिए मार्गदर्शन।

0: चाहता हूं, न केवल देश के प्रधानमंत्री, न केवल गृह मंत्री, समग्र देश की जनता आपकी वीरता को सैल्यूट करती है, आपकी दक्षता पर भरोसा करती है और आपकी प्राण के अंत तक देश की सुरक्षा करने की धगस से निश्चिंत होकर बारह महीना चैन की नींद सोती।
1: आधुनिकीकरण की दिशा में BSF अग्रसर है, जिसमें स्मार्ट फेंस की व्यवस्था बखूबी रेखांकित करती है। यह फ्लड लाइन, ड्रोन आधारित रडार, फिडार, CCTV कैमरों और अन्य उपकरणों के संरेखित उपयोग की व्यवस्था है। स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ साथ ड्रोन फॉरेंसिक्स के उपयोग में भी BSF ने नए प्रतिमान रचे हैं। सीमा प्रबंधन में तकनीकी नवाचारों का समावेश करने के लिए विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों से करार किए गए और किए जा रहे हैं। BSF की अश्रु गैस इकाई ने इस वर्ष अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं। इस संस्था के उत्पाद आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में अहम भूमिका निभाते हैं। खेलों के क्षेत्र में

प्रदर्शन कर प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। प्रहरियों का कल्याण गृह मंत्रालय एवं बल प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। नए आवासीय परिसरों का निर्माण किया गया है तथा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पारिवारिक कल्याण से संबंधित अनेक योजनाओं का सतत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की पेंशन एवं अन्य लेयकों के त्वरित निस्तारण को भी पीएसएफ प्रशासन सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। बल की हीरक जयंती के अवसर पर वर्ष पर्यंत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 60 वर्षों की सेवा, बलिदान एवं सशक्तिकरण की गाथाओं को पिरोए हुए

0: हुए। 21 मई 2026 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर विजय पाई है।
1: कौशल, शेरिंग, रेबेका और बुलबुल, सबसे पहले तो समस्त बीएसएफ परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई।
0: विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर

0: 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने और माननीय गृह मंत्री जी के सीमा सुरक्षा बल को विश्व का सर्वोत्तम सुरक्षा बल बनाने की परिकल्पना को साकार करने के लिए पुनः संकल्प लेता है। जय हिंद।
1: अपने छह दशकों के दौरान अपने न केवल सीमाओं

0: And I'm Shri Amishar has come to the front of the desk to give away the awards.
1: बीएसएफ की 35 बटालियन की एक टुकड़ी एरिया डोमिनेशन के लिए आगे बढ़ रही थी, तभी नक्सलियों द्वारा बिछाई गई आईडी की चपेट में आकर उप निरीक्षक महेंद्र सिंह बुरी तरह

प्राप्त करने आ रही हैं शहीद उपनिरीक्षक महेंद्र सिंह की बहादुर धन पत्नी श्रीमती राजवती।

0: यादव ने छत्तीसगढ़ बटालियन में पड़ाव पड़ा। 6 जून 2023 मणिपुर के मैतेई एवं कुकी समुदाय के बीच खूनी संघर्ष के दौरान शांति बहाली के लिए तैनात 163 बटालियन की टुकड़ी पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया, जिससे टुकड़ी में शामिल आरक्षक रंजीत यादव बुरी तरह जख्मी हो गए। परंतु अपने बहते खून की परवाह किए बगैर बहादुर प्रहरी रंजीत यादव आखिरी सांस तक लड़ते रहे और उपद्रवियों को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया।
1: स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दें और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाएं। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाएं। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: श्रोताओं दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी
3: 28 मई 2023।
2: मणिपुर दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो हमें जरूर बीएसएफ की 122 बटालियन की टुकड़ी का नेतृत्व किसी भी कार्यक्रम में
3: अचानक उग्रवीर ने आम नागरिकों पर हमला कर दिया। अमूल्य मानव जीवन की हिफाजत के लिए सीमा बैंडियों ने फौरन जवाबी कार्रवाई की और आगे बढ़ते हुए उपद्रवियों का डटकर मुकाबला किया। परंतु इस दौरान सीमा प्रहरियों की टीम में शामिल बहादुर आरक्षक नरेंद्र कुमार बुरी तरह जख्मी हो गए, तो लेकिन आखिरी दम तक डटे रहे और कर्तव्य की बलिदेवी पर अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। अद्भुत नेतृत्व क्षमता और पराक्रम के लिए बहादुर अधिकारी अशोक कुमार तथा शहीद आरक्षक नरेंद्र कुमार को वीरता पदक से अलंकृत किया गया। पहले पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद आरक्षक नरेंद्र कुमार की बहादुर जीवन संगिनी श्रीमती सुनीता देवी।

था सज्जनों, सीमा सुरक्षा बल का गौरवशाली इतिहास असंख्य वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। उसी गौरवशाली इतिहास में गत वर्ष एक और नया अध्याय लिखा गया, जिसे हम सभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जानते हैं। अभिषेक श्रीवास्तव सहायक कमांडर साथी बटन 9 और 10 मई 2025 की रात जम्मू सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा चौकी खरगोल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार से लगातार हो रही गोलीबारी के बीच बहादुर अधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव

श्री रविंद्र राठौर उप कमांडेंट ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजस्थान के श्रीगंगानगर सेक्टर से लगी पाकिस्तानी सीमा के रास्ते भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक पाक रेंजर को अपनी जान पर खेलकर

मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा 175 बटालियन 20 अप्रैल सन 2023 भारत बांग्लादेश सीमा पर रात के लगभग 9:30 बजे पेट्रोलिंग के दौरान मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा ने टेंगोन नदी के पुल के समीप कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को देख जैसे ही ललकारा कि भारी संख्या में बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। बुरी तरह घायल होने के बावजूद बहादुर सीमा प्रहरी नरबू शेरपा ने वीरता के साथ मुकाबला करते हुए एक तस्कर को धर दबोचा। शौर्य पराक्रम एवं वीरता की पराकाष्ठा रचते हुए

0: और अब विशेष संक्रिया यानी स्पेशल ऑपरेशंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्टता पदक श्री अंकित गोयल आईपीएस उप महानिरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय गुरदासपुर 12 नवंबर सन 2021 महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली में एसपी के रूप में तैनाती के दौरान श्री अंकित गोयल ने विश्वस्त सूचना के आधार पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें नक्सलियों और कमांडो के बीच 13 से 16 नवंबर 2021 तक चले मुठभेड़ में 27 खूंखार नक्सली मारे गए तथा भारी मात्रा में असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। वीरता शौर्य एवं रण कौशल में माहिर इस बहादुर अधिकारी को स्पेशल ऑपरेशंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्टता पदक से अलंकृत किया गया है। अंकित गोयल उप महानिरीक्षक।
1: श्रोतम दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी लहर। तो दोस्तों आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हैं हमारे कार्यक्रम में
2: बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान से कोई और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि वह अपने आशीर्वचनों से
1: इम्प्रूवमेंट आए कुछ बेहतर बनाया जाए। आप किसी भी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए इस नंबर पर 9436887808 पर। हम चाहते हैं कि आप जरूर मैसेज कीजिए। और जी हाँ श्रोताओं दोस्तों हमें आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा।
3: आज के इस
1: श्रोताओं
3: गरिमामयी
1: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 जहां होती है दिल से दिल की बात।
3: महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार जी,
4: बात पहुंची
3: श्री तपन डेका जी, निर्देशक आसूचना ब्यूरो,
5: गीत संगीत
3: श्री राजेंद्र कुमार जी,
6: गुलदस्ते से
5: प्यार भरे
3: सचिव सीमा प्रबंधन गृह मंत्रालय
6: है आकाशवाणी
3: श्री महेश कुमार अग्रवाल
6: 3.1 मेगाहर्ट्ज़
3: विशेष महा

0: 46 वो बहादुर सीमा सुरक्षा बल के जवान।
1: चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जिसका नाम है पाश्चात्य गीत, याद की वेस्टर्न मेलोडीज।
0: सीमा सुरक्षा बल के

सभी पूर्व डीजी जिन्होंने अपने अपने समय में सीमा सुरक्षा बल को और मजबूत करने में सराहनीय योगदान दिया है, और भारत सरकार के सभी उपस्थित अधिकारीगण, अलग अलग सीएपीएफ के डीजी और प्यारे जवान, सबसे पहले मैं आज आप सभी को बहुत बहुत बधाई।

0: अधिक निष्ठा कर्तव्य परायणता
1: हेलो एवरीवन दिस इज
0: राष्ट्र के प्रति
1: एंड वेलकम बैक टू वेस्टर्न म्यूजिक
0: पूर्ण आपका जो समर्पण है
1: सो टुडेस सेशन कंसिस्ट्स ऑफ सॉन्ग्स दैट विल लिफ्ट योर स्पिरिट्स गेट
0: यू सबसे पहले
1: ब्रिंग अ लिटिल एक्स्ट्रा ब्राइटनेस टू योर डे
0: मैं स्थापना से अब तक
1: स्टार्टिंग आउट गेटिंग रेडी
0: 65 से 2026 तक मिक्स
1: ऑफ वेस्टर्न ट्रैक्स लाइंड अप टू कीप यू
0: कंसिस्ट सीमा सुरक्षा बल के जिन जवानों ने
1: लेट्स टर्न अप द एनर्जी विद अ सॉन्ग दैट नेवर फेल्स टू मेक यू
0: स्माइल अप्रीतम देशभक्ति और कर्तव्य परायणता का प्रदर्शन करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है वो सभी 2000 से ज्यादा जवानों को मन पूर्वक श्रद्धांजलि और

अभी-अभी बीएसएफ की महिला टीम द्वारा माउंट एवरेस्ट पर फतह करने की एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है, इसलिए उस टीम के सभी सदस्यों को और सभी सीमा सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अभी हमने दृश्य देखा, एवरेस्ट की चोटी पर जब वंदे मातरम गाया जाता है तो यहाँ दिल्ली के हॉल में बैठकर भी हमारे मन के अंदर बहुत आनंद और संतोष की अनुभूति होती है। मैं उन महिला जवानों को, उनके अनुभव को यहाँ बैठकर महसूस करता था कि कितना रोमांच हुआ होगा जब आसमान को छूने वाली चोटी पर वंदे मातरम का वो गान करते होंगे, और वो भी वंदे मातरम के 150वीं जयंती के वर्ष में एक गान गाने का सौभाग्य इनको मिला है। मैं फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मित्र अटल जी के समय पर एक बॉर्डर एक बल ये सिद्धांत तय किया।

सटी हुई 1289 किलोमीटर की सीमा और बांग्लादेश से सटी हुई 4100 किलोमीटर की सीमा। हम सब जानते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से दोनों सीमाएं वल्नरेबल भी है और हमारे लिए चिंता का कारण भी, परंतु उस वक्त भी सोच समझकर ही देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने निर्णय किया होगा कि जो सबसे कठिन काम है वो बीएसएफ को दे दीजिए, बीएसएफ कभी दो कदम पीछे नहीं हटे। और मुझे कहते हुए आनंद है कि अब तक ये बॉर्डर, दो बॉर्डर को आपके संभालने के बाद जितनी भी चुनौती आई इसमें पराजय का मुंह दुश्मन को ही देखना पड़ा है, कभी आपने भारत का सर नीचे नहीं होने दिया है। और आज हम देखते हैं कि कई प्रकार की नई चुनौतियां सीमा सुरक्षा में हमारे सामने खड़ी हुई, अवैध घुसपैठ, नारकोटिक्स की तस्करी, गौ तस्करी, फेक करेंसी का चलन, संगठित अपराध, ड्रोन से हथियारों की और नशे की तस्करी, कई प्रकार की चुनौतियां बीएसएफ के सामने। मगर बीएसएफ ने लगातार इसके लिए किसी न किसी प्रकार से इन चुनौतियों का सामना करने का सुनियोजित प्रयास किया है। और मैं आगे पर 7वें साल में भारत सरकार क्या करने वाली है वो भी बताऊंगा, मगर आपने, आपके पास जो सीमित संसाधन थे वो सीमित संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए इस सभी चुनौतियों के साथ दो दो हाथ कर देश की सुरक्षा करने का काम किया है, जिससे हमें सुनिश्चितता है। आपकी भूमिका अब आने वाले दिनों में और ज्यादा अधिक इंटीग्रेटेड भी करनी पड़ेगी और व्यापक भी करनी पड़ेगी। अब हम केवल पारंपरिक तरीके से सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते।

और राज्य के प्रशासन इस सबके साथ मिलकर सुरक्षा की ग्रिड को मजबूत करना पड़ेगा, तभी जाकर हम ये नई चुनौतियों का सामना कर सकते। और एक हमने सीमा सुरक्षा को एक आइसोलेटेड काम के रूप में देखने की जगह एक टेरिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देखना पड़ेगा, तभी जाकर हमें सारी चुनौतियों को पार करने में सफल होंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमने आगे के खतरों को भी देखना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है देश के उस पार से कृत्रिम तरीके से जनसंख्यिकी में जो बदलाव किया जा रहा है घुसपैठ के द्वारा, उसको रोकने के लिए सतर्क और सजग रहना पड़ेगा। अर्थतंत्र पर नार्कोटिक्स और फेक करेंसी के हमले से जिस प्रकार से हमारे अर्थतंत्र को खोखला करने का प्रयास हो रहा है, इसके लिए भी हमने सतर्क रहना पड़ेगा। साइबर चुनौतियां, हाइब्रिड वॉरफेयर और ड्रोन के खतरे, ये सभी के लिए एक नई रणनीति लेकर आना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि सीमा सुरक्षा बल ये करने में कभी पीछे नहीं हटेगा। मित्रों, आज सीमा सुरक्षा बल के काम का व्याप देखते हैं तो सियाचिन और कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियां, कुपवाड़ा, केरन, उरी जैसे दुर्गम क्षेत्र, राजस्थान का रण, कच्छ का छोटा रण, सरक्रिक के दलदली नाले, सुंदरवन के घने जंगल और झरने, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की कठिन पूर्वी सीमाएं,

पुलिस पदक सीमा सुरक्षा बल ने अपने अदम्य साहस, वीरता और समर्पण के कारण अर्जित किए हैं, वो हम सब के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है। मित्रों, 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हमारी रक्षा नीति और सीमाओं की सुरक्षा के बारे में हमारे नजरिए में हमने आमूल चूर परिवर्तन किया। पाकिस्तान के द्वारा किए गए तीनों हमले, हमने इसका जवाब दिया, चाहे उरी हो, पुलवामा हो या पहलगाम। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक कर, एक बार एयर स्ट्राइक

हमारे वार्ता कर दी। हमने हमारे सुरक्षा परिदृश्य को भारत के संविधान के स्पिरिट से मजबूत बनाने का काम किया है और ये सब एक प्रकार से एक नई डिफेंस ड्राफ्टिंग का एक प्रकार से घोषणा है।

से नवाजा है। मगर मित्रों, आने वाले दिनों में भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि 60वां वर्ष हम सीमा सुरक्षा बल को पूर्णतया एक डिजाइन के तहत ये 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर एक समान स्मार्ट बॉर्डर बनाने में तकनीकी सहायता भारत सरकार करेगी, भारत सरकार का गृह मंत्रालय करेगा।

में चलाने जा रहे हैं, इसमें भी सीमा सुरक्षा बल की बहुत अहम भूमिका रहने वाली है और सीमा सुरक्षा बल की सतर्कता से दोनों ओर की सूचना एकत्रित कर नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। मित्रों, आने वाले 3-4 साल एक प्रकार से सीमा की सुरक्षा में संपूर्ण बदलाव के 4 साल रहने वाले और हमने इसके लिए अभी से कमर कसनी है, मन से तैयारी करनी है, टेक्निक आज

की जिम्मेदारी बढ़ती है। ये भाव के साथ तकनीक को आत्मसात करते हुए स्थानीय लोगों से संवाद प्रस्थापित करते हुए स्थानीय प्रशासन से तालमेल बढ़ाते हुए हम सब एक बार लक्ष्य तय कर ले कि इस देश को घुसपैठ से मुक्त करना है और हमारी जनसांख्यिकी में कृत्रिम परिवर्तन को हम रोकने में सफल हो तो मुझे नहीं लगता ये बहुत कठिन काम है। मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूँ कि आने वाले दिनों में जो अभियान चलने वाला है उसमें आपका पूर्ण के साथ सहयोग मिलेगा और हम एक नई सुरक्षा ग्रिड का निर्माण पश्चिमी और पूर्वी दोनों सीमाओं पर बनाने में सफल होंगे। फिर से एक बार श्रीमान रुस्तम जी को मन पूर्वक नमन भी करना चाहता हूं और उनके काम की सराहना भी करना चाहता हूं। और जिन जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है वो सबको श्रद्धांजलि देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। भविष्य में स्मार्ट बॉर्डर

0: विशेष महानिदेशक द्वारा धन्यवाद।
1: माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, श्री तपन डेका डायरेक्टर सूचना ब्यूरो, श्री राजेंद्र कुमार सचिव सीमा प्रबंधन, श्री प्रवीण कुमार महानिदेशक सीमा

गौरवपूर्ण अवसर पर आप सभी की उपस्थिति ने इस आयोजन को अत्यंत सार्थक और गरिमामयी बना दिया है। आपके सानिध्य और समय के लिए मैं सीमा सुरक्षा बल परिवार की ओर से आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मान्यवर, आपने अत्यंत व्यस्तता के बीच इस कार्यक्रम के लिए समय निकालकर न केवल हमारा मान बढ़ाया है बल्कि यह दर्शाया है कि सीमा प्रहरियों के प्रति आपका स्नेह, सम्मान और विश्वास अटूट है।

0: करने का संकल्प करते हैं। सीमा सुरक्षा बल परिवार अपने सभी विशिष्ट अतिथियों का भी हार्दिक आभार प्रकट करता है। आपके निरंतर सहयोग और विश्वास ने हमें सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हमें आशा है कि भविष्य में भी आपका स्नेह और मार्गदर्शन यूं ही बना रहेगा। मैं मीडिया के यहाँ उपस्थित प्रतिनिधियों का भी विशेष धन्यवाद करता हूँ। मैं आयोजन समिति के समस्त अधिकारियों एवं कर्मियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस व्याख्यान के सफल आयोजन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। धन्यवाद। जय हिंद।
1: श्री महेश अग्रवाल, स्पेशल डीजी ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स।
2: सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह एवं रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान सिर्फ सीमा सुरक्षा बल ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का समारोह है। राष्ट्रीय महत्व के इस विशेष अवसर पर अब समय है एक ही क्रम में पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम एवं तत्पश्चात राष्ट्रगान।

तथा हमें नई ऊर्जा प्रदान की है। हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उन्हें अपने जीवन में अपनाते हुए अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से पालन

0: की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है, वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की। ये सीटें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद सीवी षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: श्रोताओं, दोस्तों, अभी हम सुनाते हैं आपको अगला कार्यक्रम जिसका नाम है गजल। तो चलिए करते हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत एक बेहतरीन गजल के साथ, जिसे गाया है पंकज उदास ने। इस गजल के बोल हैं चांदी जैसा रंग है। तो चलिए इस बेहतरीन गजल का आनंद लेते हैं सिर्फ और सिर्फ अरुण FM 103.1 MHz पर।
1: दोस्तों, आज मैं पहली बार दिया है।

0: I love my Eco, because it's got more power.
1: And it also comes with all new safety features.
2: We love our Eco, because we can bring all our friends.
0: We love our Eco,
1: because it's made every journey special.
3: Over 15 years, 12.5 lakh proud owners made their dream come true. The Eco family is growing. Get attractive offers up to ₹37,500.
4: श्रोताओं दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गजल का। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक और बेहतरीन गजल आपको सुनाते हैं, जो ली गई है फिल्म सरफरोश से, जिसे गाया है जगजीत सिंह ने, जिसे लिखा है निदा फजली ने और जिसके संगीतकार हैं जतिन और ललित की जोड़ी। तो चलिए इस बेहतरीन गजल का आनंद लेते हैं सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

ये बेहतरीन गजल गाई है जगजीत सिंह ने और ली गई है फिल्म आज से। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का गजल का आनंद लेते हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं दोस्तों, इसी के साथ ये कार्यक्रम गजल यहीं पर होता है समाप्त। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

श्रोता दोस्तों, तो चलिए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम जिसका नाम है गीत माला, जो कि हमारे फौजी भाइयों और बहनों को समर्पित है। तो चलिए देर न करते हुए आपको सुनाते हैं इस कार्यक्रम का पहला गीत, जिसके बोल हैं छोड़ो कल की बातें, जो लिया गया है फिल्म हम हिंदुस्तानी से, जिसे गाया है मुकेश ने। तो चलिए इस बेहतरीन गीत को सुनते हैं हमारे सभी फौजी भाइयों और बहनों के साथ, और आप सभी आकाशवाणी श्रोताओं के साथ। तो चलिए आनंद लेते हैं इस बेहतरीन गीत का अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: श्रोताओं दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीत माला का, जो कि हमारे फौजी भाइयों और बहनों को समर्पित है। तो दोस्तों, क्या खूब लिखा है किसी फौजी ने, जहां खून भी शाही बन जाए वो सरहद की कहानी है, कोई किताब नहीं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम उन वीर जवानों को सलाम करते हैं जो हमारे लिए हर वक्त सीमा पर तैनात रहते हैं और अपनी जान से पहले इस देश की और सरहद की हमेशा परवाह करते हैं। तो ऐसे ही वीर जवानों को हम आप सभी की तरफ से और हमारी तरफ से भी सलाम कहते हैं। तो दोस्तों, अब आपको एक और बेहतरीन गीत सुनाते हैं, जिसे लिया गया है सिकंदर ए आजम एल्बम से मोहम्मद रफी की आवाज में। इस बेहतरीन गीत को बचपन में हर किसी ने गुनगुनाया जरूर होगा। तो इस बेहतरीन गीत के बोल हैं, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर अपने फौजी भाइयों और बहनों के साथ।

0: नमस्कार अरुणाचल। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाएं। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: श्रोता दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीत माला का।

0: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत माला। ये आकाशवाणी ईटानगर कारून FM 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी तथा अंग्रेजी समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर बातचीत की। बातचीत के बाद इस समय समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया जा रहा है। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की भारत की ये पहली यात्रा है। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
3: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है, वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। क्या एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
2: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधा कृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधा कृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। उन्होंने उनके आगामी कार्यकाल के सफल होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इस समय संयुक्त प्रेस सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
4: पूरी विजिट के दौरान आपकी आत्मीयता, आपका स्नेह और भारत के प्रति आपका विशेष जुड़ाव हमने बहुत गहराई से महसूस किया और आज

0: आपकी भारत यात्रा हमारी सैड जर्नी का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है। फ्रेंड्स, भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के आधार है। हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। भारत इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि कई तरह की कमजोरियों और चुनौतियों के बावजूद बल ने लगातार देश के गौरव को बनाए रखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi is holding talks with President of Cyprus Nikos Christodoulides in New Delhi to further strengthen bilateral cooperation. We now go over live to the Prime Minister's address.
0: और इस संकल्प को साकार करने के लिए आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
2: Prime Minister Narendra Modi chaired a meeting of the Council of Ministers in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said the meeting involved exchange of perspectives and best practices related to boost ease of living, ease of doing business and further reforms in order to realize the shared dream of a Vikasit Bharat. The Election Commission today announced the schedule for the biennial elections to 24 seats of the Rajya Sabha from 10 states. Former Prime Minister H.T. Devegowda, Union Ministers George Kurian and Ravneet Singh are among the members who are completing their terms next month. 4 seats each in Andhra Pradesh, Gujarat and Karnataka, 3 seats each in Rajasthan and Madhya Pradesh, 2 seats in Jharkhand and 1 seat each in Manipur, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Mizoram will fall vacant. According to the Commission, the notification will be issued on the 1st of next month and the polling will be held on the 18th of June. The counting of votes will take place on the same day. The Commission also announced the Rajya Sabha by-poll for 1 seat each in Maharashtra and Tamil Nadu. The seats are vacated by Maharashtra Deputy Chief Minister Sunetra Ajit Pawar and AIADMK MP CV Shanmugam, who were recently elected to the State Assembly. The by-poll will also be held on the 18th of next month. Union Home Minister Amit Shah has said the government will launch the Smart Border Project to make the entire border even more impregnable. Addressing the investiture ceremony of BSF in New Delhi today, Mr. Shah said the project will be equipped with drones, radars, cameras and other technical resources. He said the work is progressing towards developing an impregnable border security framework by integrating all types of technologies into the Border Security Forces security system under the Smart Border concept within the coming 1 year. The Home Minister said the security of international borders must be viewed as a broader territorial responsibility rather than an isolated task to tackle the challenges. Mr. Shah said despite vulnerabilities and multiple challenges,

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोताओ दोस्तों, अब समय हो चला है कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक का। तो चलिए आनंद लेते हैं इस बेहतरीन कार्यक्रम का, जिसे कहते हैं हिट्स ऑफ 60s। दोस्तों, 60s का दशक यानी हिंदुस्तानी सिनेमा का वो सुनहरा दौर जब गीत सिर्फ सुने नहीं जाते थे, महसूस किए जाते थे। और आज हम आपको सुनाते हैं एक ऐसा ही बेहतरीन नगमा जिसे सुनकर आज भी चांद थोड़ा ठहर जाएगा। तो ये लिया गया है फिल्म चौदहवीं का चांद से। इसके जो संगीत दिया है रवि ने और गीतकार है शकील बदायूनी, और अपनी जादुई आवाज से इसे अमर बनाया है मोहम्मद रफी ने। दोस्तों, ये सिर्फ एक गाना नहीं, मोहब्बत की तारीफ में लिखा गया एक खूबसूरत खत है। कहते हैं जब ये गीत रिलीज हुआ था तब लोगों ने पहली बार महसूस किया था किसी की खूबसूरती को शब्दों में इस कदर भी सजाया जा सकता है। तो चलिए इस बेहतरीन गीत को सुनते हैं जो आपके दिल को जरूर छू जाएगा। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं अरुण FM 103.1 MHz पर आप सभी श्रोताओं दोस्तों के साथ।

0: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: श्रोतो दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम हिट्स ऑफ सिक्सटीज का या म्यूजिक ऑफ सिक्सटीज। तो दोस्तों, कुछ गीत जो हैं सिर्फ सुने नहीं जाते, वो दिल की धड़कनों में उतर जाते हैं। कुछ धुनें वक्त से नहीं बंधती, वो हर दौर में दिलों पर राज करती है। आज ही की ये आपको सदाबहार पेशकश फिल्म आपको वो कौन थी फिल्म से अभी आप सुनेंगे एक बेहतरीन और खूबसूरत गीत, जिसे अपनी रूहानी आवाज दी है लता मंगेशकर ने और मधुर संगीत से सजाया है मदन मोहन ने और दिल छू जाने वाले बोल लिखे हैं राजा मेहंदी अली खान ने। तो दोस्तों, इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी श्रोताओं दोस्तों के साथ।

0: I love my Eco, cause it's got more power.
1: And it also comes with all new safety features.
2: We love our Eco, cause we can bring all our friends.
0: We love our Eco,
1: cause it's made every journey special. Over 15 years, 12.5 lakh proud owners made their dream come true. The Eco family is growing. Get attractive offers up to ₹37,500.
3: श्रोताओं दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक ऑफ 60s का। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनाते हैं एक और बेहतरीन गीत, जो लिया गया है फिल्म हम दोनों से, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने, जिसके बोल हैं अभी ना जाओ छोड़कर। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी श्रोताओं दोस्तों के साथ।

0: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: श्रोता दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक का। तो दोस्तों, कुछ धुनें जो ऐसी हैं जो वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, बस हर बार सुनो तो दिल नया सा धड़क उठता है। और ऐसी ही एक अमर धुन लेकर आए थे संगीत के जादूगर मदन मोहन साहब फिल्म अनपट से। तो दोस्तों, 1962 की इस फिल्म ने सिर्फ कहानी से नहीं बल्कि अपने गीतों से भी लोगों के दिलों पर राज किया। राजा मेहंदी अली खान के अल्फाज और लता जी की वो रूहानी आवाज, जैसे चांदनी रात में कोई धीमी सी हवा बह रही हो। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है जिसकी याद किसी पुराने गीत से जुड़ी है, तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। और बताइएगा कि आपका वो सदाबहार गाना कौन सा है जिसे आप हमेशा गुनगुनाते रहते हैं। तो दोस्तों, इश्क वो किताब है जिसमें लफ्ज नहीं एहसास पढ़े जाते हैं। तो आइए महसूस करते हैं वही एहसास लता मंगेशकर के दिल छू लेने वाली आवाज में। तो पेश है ये बेहतरीन नगमा, आपकी नजरों ने समझा, सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

दोस्तों इसी के साथ कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक यहीं पर होता है समाप्त। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी अभी हम अगला कार्यक्रम सुनेंगे, जिसका नाम है हिंदी फिल्म सॉन्ग्स।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोताओं दोस्तों, तो चलिए अब आनंद लेते हैं कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का। तो इस कार्यक्रम में आपको सुनाते हैं पहला गीत जो लिया गया है फिल्म दिलवाले से, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं, जिसके बोल है जीता था जिसके लिए, सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: Of my eco, cause it's got more power.
1: And it also comes with all new safety features.
2: We love our eco, cause we can bring all our friends.
0: We love our eco,
1: cause it's made every journey special. Over 15 years, 12.5 lakh proud owners made their dream come true. The Eco family is growing. Get attractive offers up to ₹37,500.
3: श्रोताओं दोस्तों आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर जहां होती है दिल से दिल की बात और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनाते हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत जिसे लिया गया है फिल्म बादल से जिसे गाया है सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति ने। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: It is in New Delhi, says India and Cyprus aim to double investment flows in next 5 years. Election Commission announces biennial elections for 24 Rajya Sabha seats from 10 states on 18th of next month. Supreme Court to hear plea next week against CBSE's three-language compulsory study for Class 9 students from July 1st. IMD issues red alert for severe heat wave over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbh till tomorrow. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to take on Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस ने आज आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
2: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
2: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
2: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए श्री क्रिस्टोडोलाइट्स का ये पहला भारत दौरा है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के

0: विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है, वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है, मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
2: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की एक एक सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की एक एक सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। चुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
0: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूडीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
3: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपाकुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली

0: उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। यह याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के 2रे चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल BSF के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
1: आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृहमंत्री ने कहा कि BSF ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
2: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले ये छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोराइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्य

0: लोकसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिडडे न्यूज और दोपहर समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोताओं दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करती हूं। मैं हूं आपकी रेडियो साथी आरजे पूनम और तैयार हूं आपके लिए एक दिलचस्प सफर लेकर जिसे हम कहते हैं हिट्स ऑफ 90s। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम में आपको सुनाते हैं पहला गीत जो उस वक्त की बहुत ही फेमस और सुपर हिट फिल्म से है। उस वक्त के जमाने में अगर हम 90s की बात करें और DDLJ की बात ना करें तो ऐसे लगता है 90s कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसीलिए हम 90s का दौर शुरू करते हुए आपको सुनाते हैं इस सुपरहिट फिल्म का एक सुपरहिट सॉन्ग जिसे गाया है कुमार सानू और लता मंगेशकर ने, जिसके बोल हैं तुझे देखा तो। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं अरुण FM 103.1 MHz पर अपनी रेडियो साथी आरजे पूनम के साथ।

0: नमस्कार अरुणाचल। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s का। तो दोस्तों, अब एक और सुपरहिट फिल्म का गीत सुनेंगे जिसका नाम है कुछ कुछ होता है। तो दोस्तों, इस बेहतरीन खूबसूरत फिल्म का एक बेहतरीन नगमा सुनते हैं, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति ने। इस गीत के बोल हैं साजन जी घर आए। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं सिर्फ और सिर्फ अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC.
2: श्रोताओं दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात. और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s का. तो दोस्तों, कभी कभी ना दिल को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है. वो किसी की एक मुस्कुराहट पर, एक आवाज पर या एक छोटी सी मुलाकात पे भी पागल हो जाता है, और फिर बस वही एहसास हर धड़कन में बस जाता है. आज का ये गाना भी कुछ ऐसे ही जज्बातों को बयां करता है. 90s के रोमांस का वो हसीन दौर, जहां मोहब्बत में मासूमियत थी, इंतजार था, और दिल की बातें सीधे गीतों में उतर जाती थी. फिल्म साजन का ये एवरग्रीन रोमांटिक ट्रैक मेरा दिल भी कितना पागल है, जिसे अपने दिलकश आवाज दी है कुमार सानू और अलका याग्निक ने, और इस खूबसूरत धुन को कंपोज किया है लेजेंडरी नदीम श्रवण ने. तो अगर आप भी किसी को चुपके से याद कर रहे हैं या किसी की यादों में खोए हुए हैं, तो ये गाना सिर्फ आपके लिए. वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और महसूस कीजिए मोहब्बत का वो सुकून. मेरा दिल भी कितना पागल है, सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर.

नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाएं। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

0: chomna akhing nam narina studio me chikan ma wa pha poe ne cha hang mane kham tai kham ti ho te khai me sut jo ho
1: श्रोताओं दोस्तों अभी आप सुन रहे थे थाई कामती श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है जहां होती है दिल से दिल की बात।
2: दिल तक बात पहुंची मिलते मिलते सनम ओ
3: गीत संगीत
4: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
3: प्यार भरे अल्फाजों में
4: दिल से दिल की बात
3: बस आपके नाम
4: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगा।

0: श्रोतम दोस्तों, तो चलिए आपको ले चलते हैं मुंबई की गलियों में और आपको सुनाते हैं कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट्स। तो दोस्तों, आज की कुछ बॉलीवुड अपडेट्स जानते हैं। सबसे पहली खबर है, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत अक्सर अपनी बेपाकी की वजह से सुर्खियों में रहती है। हालांकि बीते कुछ घंटों में कंगना एक अलग कारण से ट्रेंड कर रही है। उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसमें वो हाथों में चूड़ियां और गले में मंगलसूत्र पहने नजर आई। कई लोगों को लगने लगा कि कंगना ने अचानक शादी कर ली है, लेकिन हकीकत में कुछ ऐसा कुछ नहीं है। कंगना दरअसल इस समय अपनी नई फिल्म की शूटिंग में बिजी है। माना जा रहा है ये वीडियो तनु वेड्स मनु 3 या क्वीन 2 फिल्म के सेट से है, मगर एक्ट्रेस के इस वीडियो ने इतना बवाल मचा दिया कि अब हर कोई उनकी शादी के बारे में बात कर रहा है। ऐसे में अब कंगना को खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी, जिससे वो थोड़ी नाराज नजर आई। अगली खबर है, बॉलीवुड एक्टर पॉलिटिशियन राज बब्बर की पर्सनल लाइफ हमेशा सुर्खियों में रही। एक समय वो एक्ट्रेस स्मिता पाटिल संग रिश्ते में थे। शादीशुदा होने के बावजूद एक्टर ने उनके साथ दूसरी शादी रचाई और फिर एक बेटे प्रतीक का जन्म दिया। हालांकि एक्ट्रेस अपने बच्चे को जन्म देते वक्त गुजर गई, जिसके बाद राज बब्बर ने बेटे की परवरिश की। वो वापस अपनी पहली पत्नी नदीरा बब्बर और दोनों बच्चों के पास आए।
1: इन दिनों अपनी निजी जिंदगी और कार फेस्टिवल की
0: अगली खबर लेते हैं। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के बारे में ये खबर है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के पाली हिल वाले अपार्टमेंट वास्तु को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि रणबीर कपूर ने अपना अपार्टमेंट वास्तु को किराए पर दे दिया है। ये वही अपार्टमेंट है जहां रणबीर ने आलिया से शादी रचाई थी। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान एक परफेक्ट फैमिली मैन भी हैं। वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। शाहरुख ने अपनी मेहनत से अपने तीनों बच्चों सुहाना, आर्यन और अब्राम को एक ऐसी लाइफ दी जिसका सपना हर कोई देखता है। सुहाना और आर्यन दोनों इस समय अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और फिल्मी लाइन में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं उनके सबसे छोटे बेटे अब्राम फिलहाल स्कूल में पढ़ रहे हैं। शाहरुख के बच्चे आर्यन सुहाना ने अपनी पढ़ाई बड़ी यूनिवर्सिटी से पूरी की है। दोनों स्कूल खत्म करने के बाद विदेश शिफ्ट हुए ताकि किसी विशेष सब्जेक्ट में पढ़ाई करके आगे बढ़ सके। तो अब हम जानते हैं सुहाना का एजुकेशन क्वालिफिकेशन। शाहरुख खान की बेटी सुहाना भी अपने भाई आर्यन की तरह धीरू भाई अंबानी स्कूल में पढ़ी, जहां उनकी दोस्ती अनन्या पांडे और शनाया कपूर से हुई। स्कूल के बाद वो ग्रेजुएशन के लिए आर्डिगल कॉलेज ऑफ इंग्लैंड गई। सुहाना वहां से 2019 में ग्रेजुएट हुई। उसके बाद न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी गई, जहां उन्होंने एक्टिंग और ड्रामा सीखा। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको सुनाते हैं एक बेहतरीन गीत जो लिया गया है फिल्म सैयारा से। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं अरुण FM 103.1 MHz पे आप सभी श्रोताओं दोस्तों के साथ।

पसंद आएंगे। तो चलिए इस कार्यक्रम में सबसे पहला गीत आपको सुनाते हैं, दिल चाहता है फिल्म से, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: आप सभी श्रोता बने हुए हैं अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।
2: से बचने का और वहां

0: श्रोताओं दोस्तों, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का, और अभी आप सुनेंगे ईदू मिशमी श्रोताओं के समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर कारून FM 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: श्रोताओं, आप लुट उठा रहे थे वांछो श्रोताओं का कार्यक्रम को। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। अब पेश है ईदू मिशमी श्रोताओं का कार्यक्रम।

0: 아시지? 알지?
1: अभी आप सुन रहे थे ईदू मिशमी श्रोताओं के समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफ एम 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात। श्रोताओं दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स में। तो चलिए देर ना करते हुए आपको सुनाते हैं एक और बेहतरीन गीत, जिसे लिया गया है फिल्म गुरु से, जिसके बोल हैं तेरे बिन। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं अरुण एफएम 103.1 MHz पर आप सभी श्रोताओं दोस्तों के साथ।

श्रोतम दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब हम अगला बेहतरीन गीत सुनेंगे फिल्म द डॉन से।

श्रोतम दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और अब आप आनंद लेंगे इस कार्यक्रम का आखिरी गीत का, जिसके बोल हैं लड़की है क्या रे बाबा।

श्रोतम दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स, या आकाशवाणी ईटानगर कारुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, इसी के साथ हमारी दूसरी प्रसारण सभा यहीं पर होती है समाप्त। उम्मीद है कि हमने आप श्रोताओं को भरपूर एंटरटेन किया होगा। एफएम के कार्यक्रम जारी रहेंगे और आपके आगे के सफर के लिए जुड़ने वाले हैं आरजे सुलोकना। आज की दूसरी प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ हैं स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गैयर एती तथा तकनीक की अभियंता एचएम भूषण। तो श्रोताओं दोस्तों, अब मुझे यानी अपनी आरजे साथी पूनम को दीजिए इजाजत और अब आप सुनेंगे तांगशा श्रोताओं के समाचारों को अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर अपनी रेडियो साथी सुलोकना के साथ।

तो श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे तांगसा बोली में समाचार। इस कार्यक्रम को आगे पूरा सुनने के लिए आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी ईटानगर का रुन FM है जिसे आप सुन रहे हैं FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज।

सुहानी शाम की सुनहरी रोशनी में भीगा हुआ प्यार भरा नमस्कार। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब आसमान हल्के रंगों में सिमरने लगता है और ठंडी हवाएं दिल को सुकून देने लगती है, तब वक्त होता है खुद के लिए कुछ पल निकालने का। और इसीलिए श्रोता दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं इस तीसरी प्रसारण सभा में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। इससे पहले दूसरी प्रसारण सभा में आप बने हुए थे RJ पूनम के संग। नमस्कार डियर लिसनर्स, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त सुलोकना, और अब से लेकर रात्रि के 9:30 तक इस तीसरी प्रसारण सभा में आपके संग बनी रहूंगी। संगीत, मुस्कान और कुछ दिल छू लेने वाली बातों के साथ इस सभा के विभिन्न कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारा साथ दे रहे हैं तमाम FM ट्रांसमीटर के सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक पंचनंद डोले तथा तकनीकी अभियंता होलीराम ब्रह्मा।

0: तो चलिए इस खूबसूरत शाम को और भी यादगार बनाते हैं। अब से कुछ ही पलों में शुरू हो रहा है ज्ञान और मनोरंजन का सेगमेंट गुड इवनिंग ईटानगर।
1: गुड इवनिंग ईटानगर।

0: कहते हैं कि शाम की जो हवा होती है अक्सर अपने साथ सुकून ले आती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लिसनर्स की भी ये शाम सुकून भरी हो। आप सभी का कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आप सुन रहे थे कार्यक्रम का पहला गीत, दीवाने होके हम मिलने लगे सनम, द ओजी सिंगर सोनू निगम की आवाज में। और दोस्तों, इस ज्ञान और मनोरंजन के सेगमेंट में आगे हम पेश करने वाले हैं एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक महात्मा ने एक दीवार पर बड़ा सा सफेद पेपर लगाया और मार्कर से उस पर एक काला डॉट बना दिया। फिर सब लोगों से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है। सब लोग बोले, ये काला डॉट। तब महात्मा बोले, कमाल है, इतना बड़ा सफेद पेपर तुम्हें नजर नहीं आ रहा और छोटा सा काला डॉट नजर आ गया। फिर वे आगे बोले कि यही हाल है, यही हाल आज सभी का है। उन्हें किसी व्यक्ति की सारी जिंदगी की अच्छाई नजर नहीं आती, मगर उसकी छोटी सी बुराई तुरंत नजर आ जाती है। तो ये थी एक छोटी सी कहानी अच्छाई और बुराई पर। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और ये है कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर।
1: नमस्कार अरुणाचल। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

0: और दोस्तों, कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर के आज के इस अंक में बस इतना ही। अब से कुछ ही पलों में यानी कि 4:45 होते ही आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार और फिर आप सुनेंगे नौकते श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से। हम फिर आपसे यही मिलेंगे आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM पर शाम के 5:05 से। मिलेंगे कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव में, तब तक के लिए बने रहे, सुनते रहे आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM।
1: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई।
2: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइसिस के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा है कि भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में निवेश प्रवाह को दोगुना करना है। चुनाव आयोग ने अगले महीने की 18 तारीख को 10 राज्यों की राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की घोषणा की। नीति आयोग के सदस्य डॉ. जोराम आनिया ने कल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल प्रदेश ITA की स्थापना पर विचार विमर्श करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। अरुणाचल प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने राज्य भर में सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थाओं को आधिकारिक रूप से सख्त तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए CBSE द्वारा 3 भाषाओं की पढ़ाई अनिवार्य किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। और IPL क्रिकेट में आज शाम हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस ने आज आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों के सहयोग सहित क्षेत्र और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया।
3: हम साइप्रस के साथ मिलकर गिफ्ट सिटी को एक ग्लोबल फाइनेंशियल और सर्विसेज हब बनाने के विजन को गति देंगे और दोनों देशों के इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच कनेक्ट बढ़ाएंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा है कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा है कि पिछले एक दशक में साइप्रस में भारत में निवेश लगभग 2 गुना हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
3: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के प्रयासों को समर्थन करते हैं।
3: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है।
2: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा है कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों ने आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति की गई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री सोशिमित्सु मितेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों के प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। नीति आयोग के सदस्य डॉ. जोरम अन्या ने कल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल प्रदेश आईटीए की स्थापना पर विचार विमर्श करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. इस संस्थान की परिकल्पना अरुणाचल प्रदेश में रणनीतिक योजना, साक्ष्य आधारित नीति निर्माण और दीर्घकालिक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए एक समर्पित राज्य स्तरीय नीति थिंक टैंक के रूप में की गई है. इस बैठक में नीति आयोग के सीईओ निधि छिब्बर, आयुक्त योजना सोनम चौबे एवं अन्य उपस्थित रहे. अरुणाचल प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने राज्यभर के सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थाओं को आधिकारिक रूप से सख्त तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया है. ये निर्देश सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा 2003 के प्रावधानों के तहत लागू की गई है. यह आदेश गत 29 मई 2026 से राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप केंद्रों, मेडिकल कॉलेजों तथा प्रत्येक जिले के निजी स्वास्थ्य संस्थानों पर लागू की गई है. इस बीच स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सभी नागरिकों, मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों से इस पहल को सफल बनाने में सहयोग की अपील की है. निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है. पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन एवं रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है. एक रिपोर्ट.
1: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4,

0: राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की एक एक सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की एक एक सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनीता अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा।
1: सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जॉर्ज मारिया बागची की विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष यह मामला उठाया है। उन्होंने कहा है कि यह जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति है जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधि अनुभव है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्र राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडाइट अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ सिंह ने कहा है कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा है कि इस परियोजना ने ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
2: आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि बीएसएफ ने 1965 में 25 बटालियनों और सीमित संसाधनों के साथ शुरू की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब ये सीमाओं की रक्षा करने वाली दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठियों को देश से बाहर किया जाएगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ के लिए कल तक भूषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और दक्षिण आर्कटिक कर्नाटक में कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश होने की संभावना है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 17 जिलों वेस्ट कामेंग, पाके केसांग, पापुमपारे, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, सियांग, अपर सियांग, लोअर सियांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, लेपारादा, लोअर दिवांग वैली, लोहित, नामसाई, चांगलांग, तिरप और लोंगडिंग के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडलाइस के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा है कि भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में निवेश प्रवाह को दोगुना करना है। चुनाव आयोग ने अगले महीने की 18 तारीख को 10 राज्यों और राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की घोषणा की। नीति आयोग के सदस्य डॉ जोरा मानिया ने इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल प्रदेश आईटीए की स्थापना पर विचार विमर्श करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। अरुणाचल प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने राज्य भर के सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों को आधिकारिक रूप से सख्त तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया। सुप्रीम कोर्ट ने 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए सीबीएसई द्वारा 3 भाषाओं की पढ़ाई अनिवार्य किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: This is Akashvani, the news read by Morgan Bagram. India and Cyprus exchanged several agreements in different areas, including establishing a joint working group on counterterrorism, innovation and technology, higher education and research and cultural cooperation in New Delhi today. Prime Minister Narendra Modi held discussion with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis.

श्रोता दोस्तों, सुन रहे थे अभी आप नौकते श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से। इस कार्यक्रम को आगे सुनने के लिए आप ट्यून इन कर सकते हैं मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्स तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्स पर। यह आकाशवाणी ईटानगर का रुन एफएम है जिसे आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव।

समा है सुहाना सुहाना, हवाओं में मस्ती से छा जाना, आपके शाम के सफर को कर देने और भी खुशनुमा, लेकर आते हैं हर शाम इवनिंग ड्राइव।

डियर लिसनर्स, सुन रहे थे आप? लो, सफर शुरू हो गया. बिल्कुल, सफर शुरू हो गया है इवनिंग ड्राइव का, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर. और किसी ने लिखा है कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी. तो उम्मीद करते हैं कि ये इवनिंग ड्राइव का सफर भी हमारे संग मजेदार होगा.

0: वैसे डियर लिसनर्स, लव लेटर का जमाना तो चला गया, अब जमाना है डीएम्स का, यानी डायरेक्ट मैसेजेस का। आप सुन रहे थे लव लेटर कनिका कपूर और उनके साथियों की आवाज में फिल्म द लेजेंड ऑफ माइकल मिश्रा से। यह है कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।
1: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

0: टेक इट इजी उर्वशी। वेल दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का आज का ये सेगमेंट यहीं पर समाप्त हो रहा है, लेकिन आपको जाना कहीं नहीं है क्योंकि अब से कुछ ही पलों में हम फिर हाजिर हो रहे हैं लेकर कार्यक्रम शाम की महफिल। तो बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM पर।
1: नमस्कार ईटानगर के वासियों, मौजूदा मानसून को देखते हुए ईटानगर राजधानी क्षेत्र में भूस्खलन, बाढ़, सड़क अवरोध की आशंका हो रही है। यदि अग्रिम सावधानी नहीं बरती गई तो मानव जीवन और संपत्ति की हानि होने की पूरी संभावना है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम चेयरमैन ऑफ DDMA कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर के रहने वाले सभी निवासी जल्द से जल्द संवेदनशील क्षेत्र को खाली करें ताकि संभावित जान माल की हानि से बचा जा सके। मॉनसून के आगमन के साथ लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सावधानी बरतना आवश्यक है और उचित तैयारी से इसके प्रभाव को भी कम किया जा सकता है, जैसे कि जल भराव वाले क्षेत्र में न जाए और जलमग्न सड़कों, नालों या धाराओं को पार करने का प्रयास न करे, क्योंकि पानी का स्तर और बहाव अपेक्षा से अधिक हो सकता है। भारी वर्षा, आंधी तूफान और तेज हवाओं के दौरान अत्यंत आवश्यक न हो तो घर के अंदर ही रहे। आपातकालीन संपर्क नंबर और हेल्पलाइन नंबर हमेशा अपने पास रखें। बिजली के उपकरण और वायरिंग को पानी से दूर रखें ताकि करंट लगने से बचा जा सके। जो लोग निचले या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं, वे सतर्क रहे और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर चले जाए। तूफान या बिजली गिरने के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों या अस्थायी ढांचों के नीचे शरण न ले। पीने का पानी, आवश्यक दवाइयां, टॉर्च और बैटरियां जैसे आपातकालीन सामान तैयार रखें। प्रशासन द्वारा जारी मौसम संबंधी चेतावनियों पर ध्यान दें और निर्देशों का पालन करें। बाढ़, गिरे हुए पेड़, क्षतिग्रस्त बिजली के खंभे या बंद नालों जैसी घटनाओं की तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना भी दें। और किसी भी इमरजेंसी नंबर के लिए आप डायल कर सकते हैं DEOC यानी कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेंटर का नंबर, जिसका नंबर है 9436824371। धन्यवाद।

हेलो, नमस्कार और शुभ शाम। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त सुलोकना और आप हमारे संग जुड़ चुके हैं एक बेहद खूबसूरत सफर पर। इस अंक में हम आपके लिए पेश करते हैं सोलफुल सूदिंग हिंदी फिल्मी नगमे। इस कार्यक्रम का नाम है शाम की महफिल, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: Modern design, advanced tech. Explore Maruti Suzuki Wagon-R. Now comes with a true tall boy design, strong look and robust design. Advanced K-Series engine, ideal start-stop technology and safety features like 6 airbags, ABS with AVD.
1: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: दोस्तों, किसी ने क्या खूब लिखा है, लिखा है कि शाम होती है तो यादें अक्सर दिया जला देती है। शाम होती है तो यादें अक्सर दिया जला देती है और गुजरा हुआ कोई पल चुपके से मुस्कुरा देता है। उम्मीद करते हैं कि आप भी इस अंक में हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही गुनगुना रहे हैं और संग ही मुस्कुरा भी रहे हैं। तो चलिए बढ़ चलते हैं अब अगले गीत की ओर, जिसे हमने चुना है अरिजीत सिंह की आवाज में। फिल्म का नाम है छिछोरे।

0: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कैपिटल ईटानगर हैज ऑब्जर्व्ड दैट illegal earth cutting activities are being carried out at multiple locations without prior permissions from the competent authorities. Such activities pose serious risks to human life and property by increasing the chances of landslides, blocking drains and rivers, and damaging public infrastructures such as roads, culverts and government buildings. These issues become more severe during the monsoon season, leading to frequent road blockages, especially on NH415 and other sector roads. Therefore, under the provisions of the Disaster Management Act 2005, the district magistrate has ordered the following points. All earth-cutting activities by private individuals or government organizations are strictly banned within the Itanagar capital region with immediate effect until further notice. Administrative officers have been directed to take immediate action to stop such activities. Police authorities will deploy necessary forces to ensure enforcement of this order. Any violations can be reported to the District Grievances Redressal Cell. And the cell number is 700-5760-115. Strict legal action will be taken against violators under relevant section of the law. Thank you.

अरमान मलिक की आवाज में आप सुन रहे थे मैं हूँ हीरो तेरा, फिल्म हीरो से जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2015 में। आप बने हुए हैं हमारे संग कार्यक्रम शाम की महफिल में, एक ऐसा कारवां जहां रोज शाम हम और आप मिलकर सजाते हैं सॉफ्ट और सूदिंग हिंदी नगमों की ये हसीन महफिल। कुछ बातें अनकही रह जाती है और कुछ शिकायतें दिल में ही दबी रह जाती है, और इसी अनकहे दर्द और मोहब्बत को बयां करता हुआ पेश करते हैं अगला नगमा।

तो दोस्तों, मोहित चौहान के इसी गाए हुए नगमे के साथ ही हम आपको छोड़े जा रहे हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप फिर सुनेंगे हिंदी फिल्मी गीतों का कारवा, बस यही आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM पर। तो बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

0: स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी।
1: एक बार फिर से आप सभी का आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम पर पुनः स्वागत करते हैं। चलिए अब बढ़ चलते हैं हिंदी फिल्मी गीतों की ओर।

0: वेल दोस्तों, ये है आकाशवाणी ईटानगर कारून एफएम। जैसे आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, इस अंक में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं हिंदी फिल्मी नगमे बैक टू बैक, लेकिन कुछ ब्रेक्स के संग। कहते हैं कि जिंदगी में ब्रेक्स लेना बनता ही नहीं, लेकिन जरूरी भी होती है। तो चलिए मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
1: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाएं। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: Modern design, advanced tech. Explore Maruti Suzuki Wagon R. Now comes with a true tall boy design, strong look and robust design. Advanced K-Series engine, ideal start-stop technology and safety features like 6 airbags, ABS with AVD.
3: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

0: dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next-gen K-Series, 1.0 litre dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: दोस्तों, इन नगमों के साथ ही हिंदी फिल्मी गीतों का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आदि श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से। हम फिर मिलेंगे आपसे 6:35 पर कार्यक्रम आज के कलाकार के संग।

0: नमस्कार ईटानगर के वासियों, मौजूदा मानसून को देखते हुए ईटानगर राजधानी क्षेत्र में भूस्खलन, बाढ़, सड़क अवरोध की आशंका हो रही है। यदि अग्रिम सावधानी नहीं बरती गई तो मानव जीवन और संपत्ति की हानि होने की पूरी संभावना है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम चेयरमैन ऑफ DDMA कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर के रहने वाले सभी निवासी जल्द से जल्द संवेदनशील क्षेत्र को खाली करें ताकि संभावित जान माल की हानि से बचा जा सके। मानसून के आगमन के साथ लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सावधानी बरतना आवश्यक है और उचित तैयारी से इसके प्रभाव को भी कम किया जा सकता है, जैसे कि जल भराव वाले क्षेत्र में न जाए और जलमग्न सड़कों, नालों या धाराओं को पार करने का प्रयास न करे, क्योंकि पानी का स्तर और बहाव अपेक्षा से अधिक हो सकता है। भारी वर्षा, आंधी तूफान और तेज हवाओं के दौरान अत्यंत
1: सी आकाशवाणी ईटानगर तनक दरम असेरूप कुमरक सिदोला सीयुम का अधिपभुवम इरोबदुम कराप अधिलुतदम तत्पाय लुबिना सी जस्टीना गम्मिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लंग साइप्रस लोक प्रेसिडेंट निकोस क्रिस्टियोनो दिलिसिस बनी इंडिया दलो साइप्रस कंट्री अन्नी एम अकोकोम अधि यादोप अमला रीजनल दलो ग्लोबल इम्पोर्टेंस लगाप बबोदोदम को न्यू दिल्ली लो दुबोसितो Perbosa abad-abad agreement ke dengam sain ibu siya amla atkan bitung. Presiden Nikos ke 4-day visit to India lo botana migom. Minister of Foreign Affairs Dr. Konstantinos Kombos, Minister of Transport, Communication and Works Alexei Vedavidis, dalo abad-abad senior official business leaders ke dengam kom anmen gato. Presiden Nikos bu Presiden Drupadi Murmu makom राष्ट्रपति भवन लोकारक्षीय अमला लुकान बितुम डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इस्ते तकाम लोक हॉस्पिटल दलो हेल्थ केयर कदिंग अम टेबाको फ्री जोन इदोप अमला लुकान बितुम दुमा बीरी सिगरेट कदिंग अम हॉस्पिटल कदलो इमा दोप अमला प्रोविजन सिम इंडियन लॉ कोटपा एक 2003 आरा लोक इलेक बोतुंग कोटपा एक से तकाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर प्राइमरी हेल्थ सेंटर सब सेंटर मेडिकल कॉलेज तकाम डिस्ट्रिक्ट लोक प्राइवेट हेल्थ केयर के दे लो मे 19 2026 लोक इरोप बम काय डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मेडिकल लो किला दोना पेशेंट कंगाना दलो हेल्थ केयर वर्कर अमिताकाम आग का मेडिकल आई कम्पो पर द नमानम पर इदोप अमला लुकान बितु मलोक गाना लोंगा दलो 14 दोईमुख एमएलए नवम विवेक ब ऑफिस ऑफ गुमतो सर्कल ऑफिसर अन बोलेरो गार को दोनेतो एमएलए नवम विवेक ब पब्लिक वेलफेयर कदिंग लगा पर गवर्नमेंट ऑफिशियल सपोर्ट यार ये लुगा दौला लुतम दोन अपना लोंगा लोकम संगदुपोत दलो तारासो सर्कल कद लोकम हक पर सपोर्ट बी अमला पर बोआगुम लो लुकान बिदो गुमतो सीओ ऑफिस लोक ऑफिशियल कदिंग एमएलए नवम विवेक म आयरूप मंग दौला बक गारी बिगुर नाम से बोजे को ऑफिशियल ड्यूटी लो लोकल सिटीजन के दिंग अम बोजे को इगुरिया अमला असेंगा नाम आगोम लुकान मिदो गकाना दी कोंग दलो नीति आयोग मेंबर डॉक्टर जोराम आन्या ब अन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल प्रदेश को इंगुन बोमिया अमला प बोको लोदोम बोमतो प बोसो नीति आयोग लोक सीईओ निधि चिबर प्लानिंग कमिश्नर सोनम चौबे दलो अबुद मिगोम कदिंग कोम दुमन गतो अरुणाचल प्रदेश अकोकोम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग Evidence based policy making the law long term socio economic kadopa amla institute sim rulen bom namko tanakede nolo lutat agom sim akashwani itanagar lok tatpadung botteruna livestock ayang goru kedeng laga pa veterinary aid center एनिमल वैक्सीनेशन ड्राइव को इलान बतुं कैंपेन सी निर्जली लोक मोल अन्या रोया दिक्रोंग दलो अब कॉलोनी कद लो इरोब बम काय वैक्सीनेशन कैंपेन सी अय गोरु कदार लोक बत्तरो ना की नाम फुट एंड माउथ डिजीज क्लासिकल स्विन फीवर कदिंग अम किमोमा दोप अमला इबोम नाम को असिस्टेंट वेटेनेरियन पारो के तचाब अमी अय गोरु बोमना कदिंग अम लुनो मिनोम दोला पीआरआई लीडर दलो सेल्फ हेल्प ग्रुप कदिंग अम वैक्सीनेशन ड्राइव लो आयरूप इगुर कंगुर दोप अमला लुगा बदो डीसी नामसाई सीआर कंपाब सब नेशनल मलेरिया इलिमिनेशन लगाप 3 डे रीजनल ट्रेनिंग पबो अमलो नामसाई लो इगोग्लान बतो 2022 दतक द लोक मलेरिया की नाम केस कमाना 19 डिस्ट्रिक्ट लोक हेल्थ ऑफिशियल द लो रिप्रेजेंटेटिव कुदंग ट्रेनिंग पबोलो दोमन गतो अपर सियांग लोक डीसी कम डीओ तालोजरांग ब स्पेशल इंटेंसिव रिविजनेशन लगा लोक डीसी ऑफिस कॉन्फ्रेंस हॉल लिंक्योंग लो कबा दोदुम को लोदुम बमतो पबो आगोम लो तालोजरांग ब अरुणाचल प्रदेश लोक वोटिंग लिस्ट आयरूप इबोनम लगा प तकाम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव कदिंग रिविजन प्रोसेस गायरूप इबोदोप अमला बूथ लेवल एजेंट को पार्लन दोप लुकान बिदोला तकाम स्टेक होल्डर हेड डिपार्टमेंट दलो पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव कदंग आई कम्पो प लुजु निजुन बोसे दो प अमला लुगा बिदो तना कदन नलो सुपाक मिरुपोनुंगम तत्पाया

0: श्रोता दोस्तों, सुन रहे थे अभी आप आदि श्रोताओं का समाचार। इस कार्यक्रम को आगे पूरा सुनने के लिए आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर, या फिर आप न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी आकाशवाणी ईटानगर एवं अरुण एफएम के सभी कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter.

अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी लिसनर्स का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम आज के कलाकार का।

संगीत की दुनिया में कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनते ही ऐसा लगता है मानो साक्षात सरस्वती माँ का आशीर्वाद बरस रहा हो। एक ऐसी ही मखमली पावन और रूह को छू लेने वाली आवाज की मल्लिका है KS चित्रा। जी हाँ डियर लिसनर्स, कार्यक्रम आज के कलाकार में आज हमारे कलाकार है KS चित्रा। आप सभी का कार्यक्रम आज के कलाकार में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, हम आपको सुनवा रहे थे पिया बसंती। इस अंक में आज हम बातें करेंगे KS चित्रा जी की और साथ ही पेश करेंगे उनके गाए हुए नगमे।

जी हाँ, इस अंक में यानी कि कार्यक्रम आज के कलाकार में हमारे कलाकार हैं के एस चित्रा। 6 नेशनल अवार्ड्स और पद्म भूषण से सम्मानित चित्रा जी को इंडस्ट्री में प्यार से मेलोडी क्वीन ऑफ साउथ भी कहा जाता है। उन्होंने जब भी हिंदी सिनेमा में गाया, सीधे सुनने वालों के दिलों को जीत दिया।

कार्यक्रम में अब बढ़ते हैं थोड़ा सा क्लासिकल और सूदिंग अंदाज की तरफ। ईयर 2000 में उस्ताद सुल्तान खान साहब की सारंगी और चित्रा जी की पाकीजा आवाज का एक ऐसा संगम हुआ जिसने इंडी पॉप की दुनिया में इतिहास रच दिया। जी हाँ, आप सुन रहे थे पिया बसंती रे कार्यक्रम की शुरुआत में।

और अब बढ़ चलते हैं ऐसे गाने की ओर जिसके गाने आज भी हर उदास दिल का सहारा बनते हैं। चित्रा जी की आवाज में ये दर्द ये तड़प सीधे रूह में उतर जाती है। चलिए सुनते हैं अगला नगमा, तुम बिन जिया जाए कैसे।

0: 2025 में 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: के एस चित्रा जी की उपलब्धियां कई सारे लेकिन वक्त की कमी के चलते हम उनकी उपलब्धियों के बारे में और तो नहीं बता पा रहे और समय भी हो चला है आपसे विदा लेने का। शाम के 7 बजते ही आप सुनेंगे निशी श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से। तब तक के लिए हम छोड़े जा रहे हैं आप सभी को इस आखिरी नगमे के साथ।

0: तो दोस्तों, इन्हीं नगमों के संग हिंदी फिल्मी गीतों का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है और अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आपका चहेता कार्यक्रम। जी हाँ, हिंदी फिल्मी फरमाइशी गीतों पर आधारित फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब से कुछ ही पलों में।
1: हेलो फरमाइश।
2: हेलो फरमाइश।
3: हाँ हेलो फरमाइश सर जी, नमस्ते।
2: नमस्ते, हेलो फरमाइश में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी आदरणीय वोके बागरा जी को नमस्कार प्रणाम। मैं आपका वही नियमित और पुराना लिस्नर नरेश प्रजापति रामनगर गुना मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
2: जी नरेश जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हो बताइए।
3: जी धन्यवाद सर, बस अच्छे हैं। और आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है तो बिल्कुल चाय पी लीजिएगा।
2: ओके जी जी जी, चाय पीते हुए इस प्रोग्राम में बातचीत करते हैं।
3: बिल्कुल सर।
2: जी जी, और आपने
3: दिनों के बाद इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ।
2: हाँ जी,
3: अच्छा लग रहा है।
2: अच्छा लगा आपने हमें याद किया इतने दिनों के बाद भी।
3: जी जी,
2: और आपने चाय की बात छेड़ी तो आपको कौन सी चाय पसंद है।
3: मुझे चाय तो जैसे मैं घर पे था और उन दिनों में जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं ब्लैक टी ज्यादा पसंद करता।
2: अच्छा अच्छा, ब्लैक टी
3: वो नुकसान भी नहीं करता।
2: हाँ जी, वो तो सही बात है।
3: जी जैसे रात में हम पढ़ाई करते हैं तो नींद की झपकी जो आ जाती थी उसे भी दूर कर देती।
2: जी जी जी, ये तो सही बात
3: है। और ये जो दूध वाली चाय है ये इतना ज्यादा वो फायदा नहीं करेगी क्योंकि नींद आ रही है तो इसको पीने के बाद भी नींद आ जाए।
2: क्या बात है।
3: ऐसा है
2: जी। ओके ओके, तो आजकल भी पीते हैं चाय।
3: हाँ
2: छोड़ दिया,
3: ज्यादा भी नहीं पीते हैं लेकिन हाँ जब कभी मन हुआ, कभी ऐसा लगा कि थोड़ा सिर दर्द सा लग रहा है तो फिर एक चाय बनवा लेते हैं फिर उससे आराम भी मिलता है। ये सही है कि सिर दर्द की दवाई तो है चाय।
2: जी जी जी, और इतनी गर्मी में ज्यादा चाय पीना भी सेहत के लिए ठीक नहीं है।
3: हाँ सेहत के लिए भी वैसे हाँ, सर्दियों के टाइम में सही रहता है।
2: हाँ सर्दियों के समय में।
3: अच्छा,
2: जी, जी, जी जी जी, तो चलिए बहुत ही अच्छी बातचीत हुई। कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे।
3: फिल्म है सौतन, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया।
2: चाय पे बुलाया, चाय के बाद चलिए तो गाना भी चाय वाली है।
3: बिल्कुल।
2: जी,
3: और
2: जी।
3: एक प्रोग्राम भी रहता है ना चाय पे चर्चा।
2: हाँ जी हाँ जी।
3: बिल्कुल। और जैसे हम कहीं रिश्तेदारियों में जाते हैं ना तो चाय का बड़ा महत्व होता है।
2: हाँ जी, सबसे पहले तो चाय।

0: जगह, हाँ जगह जगह बुलाया जाता है,
1: जी
0: लो भाई मेहमान आ गए हैं,
1: हाँ,
0: चलो हमारे यहाँ चलो चाय पीने, उसके बाद
1: चाय
0: फिर
1: पीने।
0: दूसरे यहाँ
1: और शादी की
0: तो
1: बातचीत
0: हमारे
1: हो वहां पे भी चाय ही चलती है पहले तो।
0: हमारे कुछ मित्र हैं।
1: हाँ जी जी जी हाँ जी,
0: सबसे पहले तो आदरणीय बोपे बागरा जी आप ही हैं,
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: हमारे आदरणीय बड़े भाई मांगीलाल चंदेल जी, गजराज लोधी जी, कल्याण सेन जी, हरिनारायण गुजर जी, रवि केवट जी, विपिन कटारे जी, राम नरेश खंजर जी, योगी राज मस्के जी, लोकेंद्र वर्मा जी, और हमारे मिंटू तिवारी जी हैं, और हमारे आदरणीय पंकज गंगवार जी हैं बरेली उत्तर प्रदेश से, उदिता और सुचिता बहन है देवरिया यूपी से, और हमारे आरजे सागर जी हैं, और ऋषिकेश पंडित जी हैं, और मांगीलाल धाकड़ जी हैं बड़ा गांव से, और ओम प्रकाश विश्वकर्मा जी हैं, और जितने भी श्रोता साथी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उन सबके लिए रहेगा ये
1: सभी को आप
0: मैसेज।
1: सुनाना चाहते हैं। तो
0: जी
1: नरेश जी, आपसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा। चलिए चाय पीते हुए आपके पसंद का गाना सुनते हैं।
0: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार नमस्कार
0: नमस्कार।
1: मैं आज मेरा नाम मेरा एड्रेस कुछ भी नहीं बोलूंगा।
0: अच्छा।
1: आज अगर मुझे क्या आप पहचानते हैं या नहीं?
0: जी आप ये हमारे नियमित प्रिय श्रोता बापोन आचार्य जी।
1: वाह क्या बात है क्या बात है।
0: और आपने हमें कॉल किया है हमारे पड़ोसी राज्य असम से।
1: ठीक है ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ
0: जी
1: असम से, हाइलाकांदी डिस्ट्रिक्ट से, बापोन आचार्य।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत
0: दिनों के
1: अच्छा।
0: बाद आपने हमें याद किया है
1: हाँ
0: बापोन
1: बहुत
0: दा।
1: दिनों के बाद सर, क्या वक्त नहीं मिलता है ना, तो काम पे बिजी रहता हूँ इसलिए
0: अच्छा
1: वक्त नहीं
0: अच्छा
1: मिलता है। तो आज मतलब आज आपका याद आया तो कल भी लग गया। अच्छा
0: जी आपने याद किया। और
1: सर कैसे हैं आप?
0: जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। आप सुनाइए आप कैसे हो।
1: जी मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आपसे बात जो हो रहे है ना, ओ मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो रहा है।
0: क्या बात है क्या बात है।
1: अच्छा
0: जी
1: तो आज आशिकी मूवी से गाना सुना दीजिए।
0: हाँ जी जरूर जरूर। कौन सा गाना?
1: सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए है आशिकी के लिए। अच्छा
0: आशिकी के लिए। और किन लोगों को डेडिकेट करना
1: हाँ,
0: चाहेंगे?
1: पहले तो मेरा बड़ा भैया, मेरा दोस्त सब कुछ बकेसार जी के लिए पहले मैं डेडिकेट कर रहा हूँ।
0: थैंक यू बहुत बहुत
1: और अनुप
0: धन्यवाद।
1: जी है, सतवा भट्टाचार्य है, सिंधु दास है, और अभी जो जो मेरे श्रोता सुन रहे हैं सभी श्रोता के लिए।
0: सभी को आप सुनाना चाहते हैं ये आशिकी
1: हाँ
0: फिल्म
1: जी
0: का गाना।
1: जरूर जरूर।
0: ओके तो बापोंदा कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: ठीक है ठीक है।
0: ओके धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, मानवर सादर नमस्कार।
0: नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार आपको हमारी ओर से।
1: मानवर, मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति, श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ, आकाशवाणी ईटानगर से।
0: कहिए कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ और आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। लेकिन हमारे मथुरा वृंदावन तो जबरदस्त प्रचंड धूप है, गरम गरम हवाएं चल रही हैं, लू का प्रकोप है, रेड अलर्ट जारी है
0: जी। शारदा प्रसाद जी, आपके आसपास कितने दूर में हरियाली दिखाई देती है?
1: जबरदस्त हरियाली तो काफी दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है, लेकिन
0: अच्छा।
1: पेड़ पौधे तो मिल जाएंगे आपको, छोटे बड़े सभी प्रकार के।
0: ओके, पहाड़ी इलाका ज्यादा दूर है क्या?
1: जी पहले इतने घने मतलब पेड़ पौधे जंगल टाइप के नहीं है, सब कट
0: अच्छा,
1: गए हैं,
0: अच्छा,
1: कंक्रीट
0: अच्छा।
1: के जंगल खूब दिखाई देते हैं।
0: ओके
1: बड़ी बड़ी कॉलोनियां बन गई है,
0: हाँ जी,
1: मकान
0: हाँ
1: बन
0: जी।
1: गए हैं, दो मंजिला तीन मंजिला चार मंजिला तक है, और उसमें बस कंक्रीट के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। दो चार पौधे लगा देते हैं हर स्ट्रीट में, जैसे
0: जी
1: कि हमारी स्ट्रीट में हर घर के सामने एक हरा भरा पौधा नजर आ जाता है।
0: ओके जी।
1: प्रचंड जो गर्मी है ग्रीष्म ऋतु में, इसका आनंद आ रहा है लू के थपेड़ों में। ये सब हम लोगों ने जो किया है, जंगलों को काट दिया, पेड़ों को काट दिया और
0: हाँ
1: पहाड़ों को
0: जी।
1: खोद दिया है, तोड़ दिया है, ऐसे तो कंक्रीट के जंगल बिछाते जा रहे हैं, तो इसका
0: जी
1: क्या होगा? तो यही परिणाम होगा,
0: जी परिणाम
1: कंक्रीट
0: यही
1: के तो
0: होगा।
1: जंगल जल्दी से गर्म हो जाते हैं और ताप रेडिएट करते लगते हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और हरे
0: सही।
1: भरे जंगल जो होते हैं उन्हें अवशोषित करके और ठंडी ठंडी हवाएं देते हैं।
0: जी
1: तो
0: जैसा
1: जो आजकल एसी काम कर रहा है, वो हमारे प्रकृति के जो वृक्ष हुआ करते थे वो काम करते थे,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और एसी से तो बहुत सारी जो गैसें बाहर निकलती है वो वायु प्रदूषण को बढ़ा देती है,
0: जी सही बात है, ज्यादा एसी
1: चाहे
0: में
1: वो
0: बैठना
1: एसी का
0: भी
1: यूज
0: हानिकारक है।
1: एसी है और फ्रिज है और ये सब जो जितनी चीजें करने वाली हैं, ये सब हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है और
0: जी
1: के लिए प्रदूषित को बढ़ाना है।
0: जी जी जी तो शारदा प्रसाद जी, कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाएं?
1: आज एक पुरानी फिल्म में याद आ रही जिसका नाम है औलाद,
0: ओके।
1: और गीत के बोल हैं, जोड़ी हमारी बनी गई।

0: से जानी, हम तो अंग्रेजी हिंदुस्तानी, जो हमारी बनेगा कैसे जानी। ये चुलबुला गीत आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ आकाशवाणी ईटानगर प्रसारण हेतु।
1: जी जरूर सुनाएंगे, और किन लोगों को आप समर्पित करना चाहेंगे इस गीत को?
0: समर्पित करता हूँ सर श्री हमारे परम आदरणीय वागरा साहब और नूरी मैम को,
1: धन्यवाद
0: आकाशवाणी ईटानगर परिवार को। और मैं याद करना चाहता हूँ ब्रज रेडियो श्रोता मित्र सर श्री अविनाश जी, आशुतोष जी, संगीता जी, लोकेन्द्र वर्मा है, राजू यादव जी, याद राम जी, और साथ में टेकचंद अग्रवाल जी हैं, सतीश रघुवंशी जी, राकेश कुमार जी हैं, पूरन वर्मा, पुरुषोत्तम जी, पुष्कर नाथ जी, इन सभी दोस्तों के साथ में ये प्यारा सा खूबसूरत गीत आकाशवाणी ईटानगर को सुनने वाले सभी श्रोताओं को सादर समर्पित करता हूँ बागरा साहब के साथ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद शारदा प्रसाद जी हमसे जुड़ने के लिए। तो सुनते हैं आपके पसंद का गाना, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश
1: चलो फरमाइश।
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार, मैं मुबारक हुसैन बोल रहा हूँ बिहार से।
0: जी मुबारक जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हो आप?
1: बस ठीक हूँ,
0: ठीक ठाक
1: हुआ है
0: जी।
1: काफी गर्मी है, स्कूल की छुट्टी मिली है तो सोचा कि फरमाइश कर लूँ।
0: अच्छा अच्छा, क्या बात है। जी जी जी,
1: यहाँ तो एटलीस्ट 38 डिग्री सेल्सियस चल रही है।
0: बाप रे। जी जी जी जी, बहुत ही ज्यादा भयंकर गर्मी पड़ रही है।
1: आपकी वहाँ की क्या स्थिति है?
0: जी हमारे यहाँ तो रात को बारिश हुई थी, अभी मौसम बहुत ही बढ़िया है,
1: सुहाना मौसम है।
0: जी जी जी,
1: नॉर्थ ईस्टर्न के तो मौसम सुहाना होते ही।
0: जी जी जी, सही कहा मुबारक जी।
1: 1974 से 94 तक तो अरुणाचल में रहा।
0: अच्छा, आप अरुणाचल में थे?
1: हाँ थे, पढ़ाई लिखाई वहीं से हुई थी, ईटानगर नाहरलगन से। तो सोचा कि भाई अपनी पुरानी जगह को याद करूँ और कुछ फरमाइश करूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है। जी जी जी, और कुछ
1: मेरे एक
0: दोस्त दोस्त कोई है ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश?
1: है, दोस्त तो मुझसे बात ही कर रहा है, इसका नाम है भोके बागरा।
0: क्या बात है, क्या बात है। जी जी
1: का
0: जी,
1: क्लास लंगोटिया यार है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। काश वो दिन फिर से लौट आता।
1: दोस्तों से अभी तक बातचीत होते रहती है।
0: जी जी जी जी, हाँ वो तो सही बात है।
1: ये सबसे बड़ी चीज है जिंदगी में, सबसे खूबसूरत चीज तो तोहफा ही होता है दोस्त।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जी जी जी,
1: हाँ कि नहीं, यादें रह जाती है।
0: हाँ यादें रह जाती है, बस यही है।
1: इसी बीच बीच में तो हम लोग आपस में अगर बातचीत कर लेते हैं, अपने दोस्तों को अगर लेते हैं तो कुछ ये बात होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने।
1: हाँ
0: तो हमारे श्रोताओं को पता चले गया कि हम दोनों लंगोटिया यार हैं।
1: हाँ एकदम एकदम।
0: जी जी जी,
1: सारे श्रोताओं को पता चले ताकि उन्हें भी ये एक मिल जाए।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: अपने दोस्तों को हमेशा जिंदा रखना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है।
1: हम दोनों एक दूसरे को
0: जी
1: जिंदा रखे हैं,
0: जिंदा रखे हुए हैं। जी जी जी। चलिए आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। तो कहिए आज कौन सा फिल्म का गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: जीने का बहाना लौटो, जीना किसको आया ही नहीं, हर दर्द का मरहम होता है कल ने दिखाया।
0: अरे वाह वाह वाह। जी जी जी,
1: ये खून भरी शान फिल्म की है, बहुत खूबसूरत गाना है।
0: जी हाँ जी हाँ जी, जरूर सुनाएंगे। और किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे?

0: आप इस गीत को?
1: आस पड़ोस में तो मेरे कोई नहीं, मैं एक पेड़ के नीचे बैठ के छाव में आपसे बातचीत कर रहा हूँ।
0: अच्छा अच्छा जी, हम दोनों मिलकर सुनते हैं इस गीत को।
1: हाँ ठीक है, सुनाइए।
0: ओके, तो मुबारक जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं
1: जी। शुक्रिया।
0: ओके।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी सर, हम सर धेमाजी असम जुनानी हकीकत से बिमल बसुमतारी बोले सर।
0: बिमल बसुमतारी जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कहिए, कैसे हो आप?
1: जी सर, हम अभी दुकान में है, दुकान में आया हुआ है अभी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, दुकान में बैठे हुए हैं और हमें कॉल लगाया आपने।
1: जी सर, जी गर्मी कैसा है सर उधर?
0: यहाँ तो अभी ठीक ही है, गर्मी, बादल छाया हुआ है।
1: जी सर, हम लोग इधर भी बहुत गर्मी हो रहा है सर।
0: अच्छा, तो बारिश बारिश हुई थी?
1: बारिश तो आया नहीं सर, अभी 2-3 दिन हो गया बारिश आया नहीं, लेकिन बहुत गर्मी हो रहा है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, जी, तो अच्छा है आप दुकान पे बैठे और हमारे साथ बातचीत करें और हमारा कार्यक्रम सुनते रहें।
1: जी सर,
0: तो इस तरह से आप गर्मी से बचे रहेंगे।
1: जी सर, जी सर, गाना सुनना था, करण अर्जुन है ना सर?
0: हाँ जी,
1: उधर का एक अच्छा वाला गाना लगा देंगे, हो जाएगा।
0: अच्छा, कोई भी आप गाना सुनना चाहते?
1: जी सर।
0: ओके, और किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: जी सर, हम लोग का रेडियो सुपर बहुत है।
0: अच्छा अच्छा,
1: डेडिकेट करना सकते हैं नाम पूरा। ये सर अमोल बसुमतारी है, फाल्कन मुंडा है, रकीबुल्ला मिठा है, रमेश प्रजापति है, धर्मवीर है, जोगिंदर रंकी है,
0: तो इन
1: और सब सब के लिए डेडिकेट करना चाहते हैं सर, और आपको भी।
0: ओके, मुझे भी डेडिकेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो विमल जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का गाना। ओके, नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी सर, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी धन्यवाद सर। लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ सर, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद लोकेंद्र जी हमें कॉल करने के लिए।
1: जी
0: और आपका मैं
1: धन्यवाद
0: किस शब्द से शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि आप काफी सारे नए श्रोताओं को हमसे जोड़ते हैं।
1: जी सर जी, ये तो आपके आकाशवाणी से प्यार है हमें, और आज इतने सालों से जुड़े हुए हैं, जब से मोबाइल ऐप आया प्रसार भारती,
0: जी
1: तो हमें बहुत से नए मित्र भी आपके प्रोग्राम में जुड़ते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है।
0: जी जी जी जी
1: क्योंकि आकाशवाणी को तो सभी रेडियो दोस्त जितने भी हैं सभी प्यार करते हैं, बहुत से पुराने लिसनर भी हैं, मतलब रेडियो की दुनिया से जो जुड़े हुए हैं पुराने साथी, वो करीब 50 साल 60 साल जब से रेडियो की शुरुआत हुई है, जब से भी कुछ कुछ लिसनर जुड़े हुए हैं,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: ऐसे
0: बात
1: व्यक्ति आपके चैनल पे जुड़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अभी मैंने पिछली बार प्रोग्राम सुना था,
0: जी
1: उसमें एक बहुत सीनियर व्यक्ति बाहुबली जी
0: बाहुबली
1: महाराष्ट्र
0: जी
1: से शामिल हुए थे,
0: जी जी जी जी
1: बहुत अच्छा
0: जी
1: लगा सर मुझे।
0: जी उनके जो
1: जी सर
0: अनुभव है
1: जी,
0: उन
1: आपका चैनल तरक्की करता रहे, और हर आकाशवाणी के जो भी जितने भी दोस्त हैं आपके यहाँ जुड़ते रहे, और जब से ये दो बार आपने प्रसारित करा है एपिसोड, दो बार प्रोग्राम को जो नया एक एपिसोड बढ़ाया है,
0: जी
1: तो इससे और भी नए साथी जुड़ रहे हैं सर।
0: जी नए साथियों को जुड़ने का मौका मिलता है। जी,
1: जी जी
0: और इसमें आपका बहुत बहुत बड़ा योगदान है लोकेंद्र जी।
1: सर जी, मेरा तो क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है ना मैंने, एक हेलो
0: जी
1: फरमाइश एकता रेडियो ग्रुप,
0: ओके।
1: तो मैं उसमें हर समय में अपडेट करता रहता हूँ, प्रत्येक प्रोग्राम की जानकारी, जो आपके दिन में भी प्रोग्राम आता है
0: जी
1: उसकी
0: जी
1: भी
0: जी
1: जानकारी, समय और सारा अपडेट करता हूँ, और जिस दिन रिकॉर्डिंग होती है, प्रसारण होता है,
0: जी
1: अरुण एफएम पे भी होगा कि आकाशवाणी ईटानगर पर होगा, ये मैं अपडेट करता रहता हूँ, पूरा ग्रुप मेंटेन करते हैं, तो ग्रुप के साथी भी उसमें सब देखते रहते हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है। जी जी जी बहुत ही
1: जी
0: अच्छा काम
1: सर
0: कर रहे हैं आप, और उम्मीद करते हैं ऐसा ही आपका जो कोशिश है वो जारी रहेगा।
1: जी बिल्कुल सर जी, और अब तो ये सोशल मीडिया पे जब से प्रचार प्रसार भी आकाशवाणी का होने लग गया है, तो ये न्यूज ऑन एयर ऐप में, मतलब मेरे हिसाब से 99% लोगों ने न्यूज ऑन एयर ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर रखा है, जो रेडियो के दीवाने हैं। न्यूज ऑन एयर ऐप पर ही सुनते हैं, साफ स्पष्ट क्वालिटी में सुनाई देता है,
0: जी
1: और किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होता है, और हम हमारे राज्य का हो या दूसरे राज्य के आकाशवाणी केंद्र को, अगर हम हमारे कहीं दूर भी हैं, कहीं बाहर गए हैं घूमने के लिए, तो वहां पर भी हम हमारे आकाशवाणी को हमारे साथ मोबाइल में पॉकेट में रखते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जी
1: जी सर,
0: तो लोकेंद्र जी आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं सही में। तो कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे लोकेंद्र जी?
1: गाना सुनना है सर, ये मुझे आज काफी दिनों से सोच रखा था कि ये गीत को सुनूंगा, फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं,
0: ओके।
1: और गीत के बोले हाय अल्लाह ये लड़का कैसा है दीवाना,
0: हो, क्या गाना
1: काजल
0: चुना
1: है
0: है।
1: अभिनेत्री इसके अंदर, बहुत अच्छा गीत है सर ये।
0: जी जी जी जी जरूर सुनाएंगे। और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे आप?
1: ये हमारे आदरणीय बाहुबली जी हैं, गुणवत भाई हैं, धीरज भाई हैं, अफजल भाई हैं, और गौतम राय बोले जी हैं, सुनील झा जी हैं भोपाल से, और एक और राम बाबू जी हैं भोपाल से, योगेश जी हैं, और प्रेम सिंह सिसोदिया जी हैं, और हमारे सिक्किम के हमारे हैं अर्जुन प्रधान जी,
0: जी जी
1: अर्जुन बहुत अच्छे बढ़िया लिसनर हैं
0: हाँ
1: दोनों।
0: जी
1: जी
0: हाँ जी
1: सर
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: जी सर, और आकाशवाणी के लिए भी यह गीत रहेगा।
0: ओके, तो लोकेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का गाना, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश
1: जी भैया, योगेश जांगड़े पे मैं तरह छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं
0: जी। योगेश जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शायद आप किसी और स्टेशन के लिए कॉल लगा रहे थे, शायद इसीलिए बिजी थे।
1: जी भैया, आप एकदम मन को पढ़ लिए।
0: ओ जी जी जी, इसीलिए आपका कॉल थोड़ा लेट से आया आज। चलिए कोई बात नहीं, आपने हमें याद किया, यही बड़ी बात है। और कितने कॉल्स लगा लिए अभी तक?
1: ये 11वां काल है आज।
0: अच्छा,
1: का।
0: ये 11वां। दिन भर कितना हो जाता है?
1: एवरेज रूप से 15 तो हो ही जाते हैं और किसी किसी दिन तो 32 भी चले जाते हैं।
0: बाप रे बाप रे बाप रे, क्या बात है।
1: जी भैया, और अभी क्या है, थोड़ा खेती बाड़ी काम पूरी तरह से बंद है अभी।
0: ओके, हाँ जी हाँ जी।
1: और गर्मी का दिन काफी गर्म है, नौतप्पा भी चालू हो गया है,
0: जी
1: तो
0: जी
1: थोड़ा सा आराम भी मिल जाता है। और एक महीने बाद

0: तो खेती बाड़ी में फिर से
1: फिर
0: लगना ही
1: से
0: है।
1: ओके ओके ओके, तो अब फ्री है तो कॉल लगाते रहो दिन भर और कार्यक्रम सुनते रहो। तो कहिए आज कौन गीत आपको सुनाए?
0: फिल्म दोस्ताने से सुनवा देंगे, दिल लगी ने जी हवा थोड़ा सा धुआं उठाए।
1: और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे?
0: हमारे हेलो फरमाइश एकता ग्रुप के तमाम साथियों को।
1: ओके, सभी को आप सुनाना चाहते हैं। तो योगेश जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सुनते हैं आपके पसंद का।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश सर, नमस्कार
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: सर मैं राम बाबू मालवी बोल रहा था सर, भोपाल से।
0: जी राम बाबू जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और
1: जी थैंक यू सर। और कैसे हो सर आप?
0: जी मैं बढ़िया हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे हो?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ सर, मैं बहुत तेज है सर।
0: ओके जी, तो
1: जी
0: तेज धूप में बाहर ना निकले तो अच्छा रहेगा।
1: बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल
0: जी
1: सर,
0: जी
1: घर पे ही रहते हैं,
0: ओके
1: जो काम है वो निपटा लेते हैं। थोड़ा ठंडा मौसम रहता है सुबह सुबह तक।
0: जी जी जी जी तो दिन भर घर में रहिए, हमें फोन लगाइए और हमारा कार्यक्रम सुनते रहे।
1: बिल्कुल, ऐप के
0: जी
1: माध्यम से आपके प्रोग्राम तो सुनते रहते हैं
0: जी
1: सर।
0: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहिए, आज कौन सा फिल्म का गीत हम आपको सुनाएं?
1: सर तेरे नाम का अनुवाद दीजिए आप,
0: ओके
1: लगन लगन लगी वो वाला गाना है ना।
0: ओके जी ओके, हाँ जरूर सुनाएंगे। और किन लोगों को डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, हमारे मित्र है लोकेंद्र वर्मा जी, और आपके लिए सर, और जितने भी तमाम सुनने वाले सभी दोस्तों के
0: सभी को
1: लिए।
0: आप सुनाना चाहते हैं। तो राम बाबू जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हमसे जुड़ते रहिए, सुनते हैं आपके पसंद का गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: सर जी, आपका भी हम बहुत स्वागत करते हैं जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद
1: सर जी। मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ जी।
0: जी जगदीश राय गर्ग जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा है मौसम आपके वहाँ?
1: मौसम सर बहुत ज्यादा, अभी
0: बहुत ही ज्यादा गर्मी हो गई,
1: भयानक गर्मी पड़ रही है।
0: ओहो जी जी जी जी।
1: और फिर भी हम इस उम्मीद में भगवान का प्रसाद मानकर इसे स्वीकार कर रहे हैं कि आज गर्मी है तो कभी बरसात भी जरूर होगी।
0: जी जरूर, सही कहा आपने।
1: कोई
0: जी
1: बात नहीं,
0: कभी सुख तो कभी दुख, कभी गर्मी
1: तो जिंदगी का हिस्सा है जी।
0: जी जी ये तो जिंदगी का हिस्सा है,
1: इसका प्रसाद है जी।
0: जी जी ऊपर वाले का प्रसाद है जी।
1: सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, कभी आंधी आती है, कभी कुछ, सब कुछ उसका दिया हुआ हमें स्वीकार है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही आपने।
1: है ना जी, एक तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार,
0: क्या
1: जो
0: बात
1: भी देना चाहे दे दे करता। तो ऐसे है, सब कुछ ठीक है
0: जी, जो भी दे हमें कबूल है,
1: समय कबूल
0: जी,
1: है।
0: जी जी जी जी। तो जगदीश जी, घर बैठे हुए आप आज कौन सा फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: सर आज मेरे दिमाग में आया कि आज विश्व चाय दिवस है, तो क्यों ना कोई ऐसा ही गीत सुना जाए, क्योंकि आम दिनों में तो ये गीत सुने नहीं जाते।
0: जी जी सही कहा,
1: किसी विशेष दिवस पर तो जरूर सुने जा सकते
0: जी,
1: हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो एक गीत है, फिल्म काफी पुरानी फिल्म है संजोग, 1961 की।
0: ओके
1: उसमें रफी साहब जी का गाया हुआ गीत है,
0: अच्छा
1: चाय पे गीत गाया है। उसकी दो लाइनें मैं तरन्न में बताता
0: जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: दो घूम

0: क्या बात है, गीत इतना बढ़िया और आपकी जो तरन्नुम है उसका तो जवाब ही नहीं।
1: शुक्रिया सर,
0: जी, बहुत ही
1: धन्यवाद।
0: बढ़िया।
1: तो
0: और
1: ऐसे में सर, ये गीत आम कामी बाईते हैं,
0: जी,
1: तो मेरा दिल किया कि क्यों ना आज चाय दिवस है तो इस गीत को याद किया जाए।
0: क्या बात है जी। और किन लोगों को
1: सर
0: सुनाना चाहेंगे इस गीत को?
1: मेरे मित्र हैं जी, गौतम राय बोले जी हैं, लोकेंद्र वर्मा जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, केशरी सिंह राजपूत जी हैं, जोगी जांगड़े जी हैं, और सुनील झा जी हैं, और पंजाब से मेरे मित्र हैं सतीश मिगलानी जी मलोट पंजाब से, और गंगा सिंह रावत जी मेरे मित्र हैं।

0: हेलो फरमाइश
1: श्रोता दोस्तों, अभी आप आनंद ले रहे थे फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश का। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

0: श्रोता दोस्तों, ये है सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कारवा, भूले बिसरे गीत, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। अभी हम आपको सुनवा रहे थे, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, फिल्म कन्यादान से। कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
1: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: Love my eco, 'cause it's got more power.
3: And it also comes with all new safety features.
4: We love our eco, 'cause we can bring all our friends.
5: We love our eco, 'cause it's made every journey special.
6: Over 15 years, 12.5 lakh proud owners made their dream come true. The eco family is growing. Get attractive offers up to rupees 37,500.

नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

0: vulnerability of its energy security to global volatility in West Asia. Now, with over 60% of its crude imports and roughly 90% of its LPG imports passing through this vital choke point, the abrupt closure of the Strait of Hormuz instantly triggers crippling inflation, soaring trade costs, and a sharp depreciation of the rupee against the dollar. So this crisis emphasizes that relying on a single maritime lifeline is unsustainable, forcing India to urgently accelerate the diversification of energy sources beyond the Persian Gulf.
1: Prabhudayal ji, just taking a cue from what you said, multilateralism is something Prime Minister Modi stressed upon.
2: पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था, वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। हमारी तेल कंपनियां संकट के समय के लिए काफी मात्रा में पेट्रोल और डीजल का भंडार रखती है। बीते 11 वर्षों में 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी डेवलप किया गया है।
3: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: There was also the meeting of the foreign ministers from Russia and Iran. What was discussed and how is energy security being addressed at the political and diplomatic front?
0: On the political and diplomatic front, India is addressing energy-related matters in a very, very active manner. India is very proactive in this regard. Our Prime Minister has pushed for alternative fuels and energy self-reliance, which would be a critical strategy to shield economies like India's from geopolitical vulnerabilities like the Middle East conflicts and choke point disruptions. So by reducing massive import bills, this approach builds macroeconomic resilience, curbs carbon emissions, and ensures sustainable long-term national security in an increasingly volatile global energy landscape.
1: Speaking about alternative fuel and energy supplies, a coal gasification scheme has been announced to the tune of 37,000 crore rupees. It is a step in the right direction. How is this actually going to benefit consumers in the country? Because they would be the hardest hit by what's happening with the West Asia crisis.
0: Government's 37,500 crore surface coal gasification scheme is a game changer for India's self-reliance because it would drive the shift of domestic coal into high-value synthetic gas and chemical products. This shift aggressively curbs India's heavy reliance on imports for vital commodities like LNG, urea, ammonia, and methanol, while unlocking the value of vast domestic reserves. This initiative is fundamentally significant to India's energy security and the Atmanirbhar Bharat goals through several concrete pathways, eradicating import dependencies. India currently imports over 50% of its LNG and 20% of its urea, as also 100% of its ammonia, 80-90% of its methanol. So by converting domestic coal into syngas, this scheme targets India's massive national gasification goals and directly replaces these foreign sourced critical chemicals and fuels.
1: Let's now hear what Union Minister Ashwini Vaishnav had to say on coal gasification.
4: आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका फैसला लिया गया है और बहुत ही सामूहिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है कोल गैसिफिकेशन की स्कीम। उस गैस

0: diversification. Therefore, the proposed 2026 energy sector reforms in India, centered on the draft National Electricity Policy, aim to transform the power sector for the 24/7 renewable energy, achieve single-digit distribution losses, and drive industrial decarbonization. So all said and done, we are pursuing a very comprehensive energy policy.
1: Thank you so much, Prabhudayalji, for giving us an understanding of what India's long-term energy strategy is and how India is expanding renewables and reducing their dependence on fossil fuels. Prabhudayalji, once again, thank you for being with us on Akashvani.
0: Thank you so much.
1: Listeners, you can also listen to this program on our mobile app, News on AIR, and our YouTube channel, News on AIR Official.
2: Current Affairs.
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्यसमूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
4: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
3: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
5: Discussions focused on enhancing cooperation.
3: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
5: In all its forms and manifestations, including cross-border terrorism.
3: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से निकाल बाहर करने का भी प्रण लिया है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि वन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली एक स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे त्वरित तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोटेगी और अमेरिका के विदेश

0: Minister of External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar, Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi, and Secretary of State of the United States Marco Rubio are arriving in New Delhi to participate in the meeting. India has delivered 20 tons of critical dry materials for BCG, tetanus and diphtheria vaccines to Kabul to augment Afghanistan's child immunization program. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad have set a target of 256 runs for Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad. Batting first after winning the toss, Sunrisers Hyderabad posted 255 runs for the loss of 4 wickets in stipulated 20 overs. In reply, Royal Challengers Bengaluru was 71 for 1 in 5 overs when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ में मोहम्मद जुबैर। मुख्य समाचार, भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत, द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक बढ़ाया, आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए भी कई समझौतों पर हस्ताक्षर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली में। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टीकों के लिए 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी और अमेरिका तथा ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के नए राजनयिक प्रयास के अंतर्गत कतर का वार्ताकार दल तेहरान पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में कहा कि दोनों नेताओं की बैठक में आतंकवाद से निपटने पर मुख्य रूप से बातचीत हुई। उन्होंने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले और लाल किले के निकट आतंकी कार विस्फोट घटना की कड़ी निंदा की।
2: Discussions focused on enhancing cooperation.
3: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: In all its forms and manifestations, including cross-border terrorism.
1: श्री जॉर्ज ने कहा कि साइप्रस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा दोनों देशों के संबंधों में मील का पत्थर है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक भागीदारी तक ले जाने का निर्णय लिया है। इस फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत साइप्रस संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं।
4: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: श्री सीबी जॉर्ज ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच विभिन्न समझौते हुए, इनमें आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्यबल का गठन तथा सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान और साइप्रस की राजनयिक अकादमी के बीच राजनयिक प्रशिक्षण से संबंधित समझौता ज्ञापन भी शामिल है। श्री जॉर्ज ने कहा कि साइबर सुरक्षा संवाद, वाणिज्य दूत संवाद 2026 से 2031 तक, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की कार्य योजना और हिंद प्रशांत सामुद्रिक पहल में साइप्रस के शामिल होने के बारे में भी महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई। अगले साल 2027 में दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे होंगे। दोनों देशों के संबंधों में आर्थिक सहयोग का महत्वपूर्ण आधार है। साइप्रस भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का 9वां सबसे बड़ा स्रोत है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया

0: के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के महासचिव नूर लान येरमेक बायेव से मुलाकात की। उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन की विभिन्न पहल और गतिविधियों के अलावा वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। विदेश मंत्री ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स युवा राजनयिक मंच के प्रतिभागियों और राजनयिक अकादमियों के प्रमुखों के साथ बातचीत भी की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने कहा कि उन्होंने ब्रिक्स संगठन के लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता तथा वैश्विक विकास में योगदान देने के विषय पर विचार साझा किए। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से BCG, टेटनस और डिप्थीरिया के टीकों के लिए 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल BSF के प्रतिष्ठापन समारोह और रुस्तमजी स्मारक व्याख्यान माला को संबोधित करते हुए कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। एक रिपोर्ट।
1: श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय जल्द ही ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमरे और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकी से लैस स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी। ये पहल शुरू होते ही सीमा सुरक्षा बल का काम बहुत ही आसान और सशक्त हो जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि भारत को साइबर खतरों, हाइब्रिड युद्ध और ड्रोन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए नई रणनीतियां अपनानी होगी। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से निकाल बाहर करने का भी प्रण लिया है। श्री शाह ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा नीति का उद्देश्य केवल समस्याओं को रोकना नहीं बल्कि उन्हें समूल नष्ट करना होना चाहिए। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल से घुसपैठ रोकने में ऐसा ही संकल्पित रवैया अपनाने का आग्रह किया। विश्व दर्पण के लिए प्रशांत कुमार।
0: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के नए राजनयिक प्रयासों के अंतर्गत कतर का एक वार्ताकार दल तेहरान पहुंच गया है। यह कदम कतर के लिए महत्वपूर्ण है जिसने संघर्ष में मध्यस्थता से दूरी बनाए रखी थी। स्वीडन में नेटो विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव पारित कराने का प्रयास कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान का नियंत्रण स्वीकार नहीं करना चाहिए और उन्होंने सहयोगी देशों से जलमार्ग को खुला रखने में मदद करने का आह्वान किया। जर्मनी ने कहा कि वह सुरक्षा मिशन में भाग लेने पर विचार कर रहा है और यूरोपीय संघ ने नौवहन के लिए खतरों को लक्षित करते हुए प्रतिबंध बढ़ाने की बात की। संयुक्त अरब अमीरात से राष्ट्रपति के सलाहकार अनवर गरगाश ने समझौते की संभावना को 50% से बेहतर नहीं बताया और कहा कि ईरान से अत्यधिक बातचीत हो चुकी है। उन्होंने सभी पक्षों से आग्रह किया कि वे लड़ाई रोकने के बजाय शत्रुता के मूल कारणों का निवारण करने वाले स्थायी राजनीतिक समाधान की तलाश करें। कई मोर्चों से राजनयिक दबाव बढ़ाया जा रहा है। सऊदी मीडिया ने खबर दी है कि अंतिम मसौदा समझौते की घोषणा कुछ ही घंटों में की जा सकती है। हालांकि इजरायली अखबार होरेट्स की एक अलग रिपोर्ट है कि किसी भी संभावित समझौते में परमाणु मुद्दे को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा सकता है। दुबई